मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के, वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 15 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58:50 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही,

0: यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला

0: स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने की आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल के लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार मंथन।

यद्यपि जिंदगी मुश्किल लग सकती है, लेकिन वही हमेशा कुछ ऐसा होगा जिसे आप कर सकते हैं और उसमें सफलता पा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग।

अभी आप समोसर में देशभक्ति रचना सुन रहे थे श्रोताओं, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण का गाया ये भजन, जिसका भाव है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। इसमें भक्त सांसारिक मोह माया और दुविधाओं से मुक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। भक्त कहते हैं, मैं पूरी दुनिया में सिया और राम का ही रूप देखता हूँ, इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो भी प्रभु के नाम का सच्चे मन से जाप करता है, उसके सारे संकट मिट जाते हैं और उसे सुख मिलता है।

अभी आपने हरिओम शरण का गाया ये भजन सुना, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के स्वर में मीराबाई की ये भक्ति रचना, जिसमें जहां मीराबाई अपनी सखी को बताती है कि कृष्ण की सुंदर छवि उनके मन मंदिर में ऐसे बस गई है जैसे हृदय में कोई बाण चुभ गया हो। कहती है, हे सखी, मेरे नयनों आंखों को श्री कृष्ण के उनसे प्रेम का ऐसा बाण लगा है कि अब मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ। मेरे प्रभु की वो मनमोहक और मधुर मूर्ति मेरे मन में समा गई है और हृदय के बीचों बीच आकर अटक गई है। मैं अपने घर में खड़ी होकर ना जाने कब से अपने प्रिय कृष्ण की राह देख रही हूँ। मैं उस प्यारे कृष्ण के बिना अपने प्राणों को कैसे रोकूं, क्योंकि वे ही मेरे जीवन का मूल आधार और संजीवनी बूटी है। मीरा कहती है कि वो तो अपने गिरधर के हाथों बिक गई हैं, पूरी तरह से उनकी हो गई हैं, जिसे देखकर संसारी लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है, लोकलाज खो चुकी है।

अभी आपने आशा भोसले के स्वर में ये मीराबाई का भजन सुना, और अब सुनिए शर्मा बंधुओं का गाया ये भजन।

0: अभी आप शर्मा बंधुओं का गाया ये भजन सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन, आलेख श्री वासुदेव शास्त्री का है।
1: आमतौर पर लोग बड़े तो बन जाते हैं, लेकिन उनमें बड़प्पन नहीं आ पाता। जीवन में बड़ा होना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़प्पन सीखना। लेकिन ये सीखा कैसे जाए, ये विचारणीय विषय है। हम अपने आचार विचार, रहन सहन और वाणी संयम के द्वारा आसानी से बड़प्पन सीख सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, संसर्गच गुण दोष भवन्ति, अर्थात जैसी संगत होती है वैसे ही गुण दोष मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते हैं। जीवन में बड़प्पन सीखने के लिए कुसंग का त्याग कर सत्संग में मन लगाना चाहिए। प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को लेकर व्यक्ति अपने में बड़प्पन अथवा छोटेपन का अनुभव करता है। ये बहुत बड़ी भूल है। जैसे कोई धन को लेकर अपने को बड़ा मानता है, कोई मकान, बढ़िया कपड़े और ऊंचा पद पाकर

0: अपने को बड़ा मानते हैं और इन चीज़ों के ना मिलने से अपने को छोटा मानते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा विचार करें तो ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर पद, रुपया, मकान, कपड़ा पाने से कोई बड़ा हुआ तो बड़ापन इन वस्तुओं में है, व्यक्ति तो छोटा ही हुआ। जिसमें बड़ापन होता है वो कुछ पाने के बाद भी अभिमान नहीं करता। कहने का तात्पर्य यही है कि अभिमान का सर्वथा नाशी वास्तविक बड़प्पन है। ये सीखा कैसे जाए, इस पर मंथन जरूरी है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसी प्रवृत्तियों को अपने जीवन में कभी हावी ना होने दें। अगर ये प्रवृत्तियां हमारे अंदर से निकल गईं, तो हम बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी यदि महान बने तो इसके पीछे छिपा उनका बड़प्पन था। घृणा द्वेष से परे रहकर इन्होंने संसार को ये बताने की कोशिश की कि सादगी पूर्ण मान सम्मान का जीवन कैसे जिया जाता है। अपनी सत्प्रवृत्तियों से ही ये महापुरुष बने और उनका बड़प्पन चिरस्थायी, अविस्मरणीय और सर्वग्राह्य बन गया।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख श्री वासुदेव शास्त्री का था, वाचिका थी माधवी जंडे। मीडियम में 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर ए हरिहरन और सुरेश वाडकर का है।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्री राम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्री राम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं जो श्री राम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति की अभिलाषा हो, जो मन वचन कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हो। क्या उसका त्याग किया जा सकता है?

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर ए हरिहरन और सुरेश वाडकर का था। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कृषि सामयिकी, इसमें सुनिए टमाटर, बैंगन और मिर्च के लिए सुझाव।
1: आज बात करते हैं टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसल के बारे में। यदि हम टमाटर, बैंगन और मिर्च लेते हैं तो ये आपको निरंतर आर्थिक उपार्जन देते रहती है। इस मौसम के लिए अच्छी जलवायु के लिए अनुकूल किस्मों का चुनाव करें और सही बीज चुनकर अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाकर गर्मी की सब्जियों का अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं, बशर्ते इन्हें नमी युक्त मिट्टी में बोएं। किसान भाइयों बहनों, प्रमाणित स्रोतों से बीज खरीदें और बुआई के पहले मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लें। हल्की सिंचाई के बाद बुआई करने से फसल अच्छी होती है। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उसके साथ साथ टमाटर, बैंगन और मिर्च जैसी जो सब्जियां हैं इनकी फसलें गर्मी में तनाव के चपेट में आने लगती हैं। फूल आने और फल बनने के दौरान यदि अधिक तापमान होने लगता है तो फलों का विकास रुक सकता है और कई बार आपने देखा होगा कि फूल भी झड़ जाते हैं, जिससे हमारा उत्पादन कम हो जाता है। इस खतरे को कम करने के लिए हमारे वैज्ञानिक भाइयों ने सलाह दी है कि 2% नेप्थलिन एसिटिक एसिड, जिसे कि NAA कहा जाता है, इसका छिड़काव करें। NAA एक पादप वृद्धि नियंत्रक है, जिसे कि हम हार्मोन भी बोलते हैं, और जो तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी फूलों के झड़ने को कम करता है और फलों के बनने में मदद करता है। सही समय और सही मात्रा में इसका उपयोग करके फलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए 2% घोल को सुबह सुबह या फिर शाम के समय छिड़कना चाहिए ताकि ये पौधों द्वारा अच्छे से सोख लिया जाए। किसान भाई बहनों, आपको अपने खेतों में गर्मी के लक्षण जैसे पत्तियों का मुड़ना, फूलों का गिरना या फलों का देरी से बनना, ये सब दिखे तो ऐसी स्थिति में NAA का तुरंत छिड़काव करें, जिससे कि फसल में राहत आपको तुरंत दिखेगी। इसके अलावा सिंचाई और मल्चिंग से, मल्चिंग यानी कि जिसको हम पलवार बोलते हैं, इससे मिट्टी में नमी बनाए रखकर गर्मी के प्रभाव को भी आप कम कर सकते हैं। NAA छिड़काव और अच्छी पद्धतियों को अपनाकर आप अपनी टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। अब बात करें यदि इनमें लगने वाले कीटों की, तो इसमें फल छेदक कीट, जिसे कि फ्रूट बोरर बोलते हैं, ये मटर की फसल में भी आता है, इसी तरह से टमाटर, बैंगन।

0: और मिर्च में भी दिखता है। खासकर जो अभी मौसम चल रहा है गर्मियों का, इसमें ये अवश्य आपको दिखेगा। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए हम सलाह देंगे कि आप समेकित कीट प्रबंधन अपनाएं, जिसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग न्यूनतम रहता है, यानी कम से कम रहता है, ताकि ये मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना डालें। सही समय पर निवारक और उपचारात्मक उपाय करके फसल को आप इन कीटों के नुकसान से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान और पर्यावरण अनुकूल तरीका है, खेत में पक्षियों के बैठने की जगह बनाएं, जिसके लिए खूंटियां आप लगा सकते हैं। जो चिड़िया या पक्षी जो होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से इल्लियों और अन्य हानिकारक कीटों को खाकर उनकी संख्या को कम करते हैं या नियंत्रित करते हैं। खेत में लकड़ी या बांस की खूंटी या खंभे लगाकर इन पक्षियों को आप आकर्षित कर सकते हैं। कीट का प्रकोप यदि शुरुआती अवस्था में दिख रहा हो आपको, तो हाथ से इकट्ठा करके इन्हें नष्ट कर दें। खराब फल और संक्रमित पौधे जो हैं, इनके हिस्सों को उखाड़कर या तो जला दें या फिर गहरी मिट्टी में दबा दें, ताकि कीटों का जीवन चक्र टूट जाए। कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप, 2 से 3 ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। ये ट्रैप नर कीटों को आकर्षित करता है, जिससे उनकी संख्या कम होती है। साथ ही आप यह आकलन कर सकते हैं कि कीटों की संख्या आर्थिक हानि स्तर तक पहुंच गई है या नहीं। यदि कीटों का प्रकोप बढ़ जाए, तो जैविक नियंत्रण के लिए बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस, इसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जो ये बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस होता है, ये एक प्राकृतिक जीवाणु है जो सिर्फ इल्लियों को ही नष्ट करता है और मित्र कीटों और मनुष्यों पर बुरा प्रभाव नहीं डालता। इसका छिड़काव सुबह या शाम को आप कर सकते हैं, और यदि इसके बाद भी ये कीट नियंत्रित नहीं होते हैं, तो स्पिनोसैड 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। स्पिनोसैड ये भी एक जैविक कीटनाशक है जो मिट्टी के जीवाणुओं से बनता है और लाभदायक जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप सुबह या शाम के समय सब्जियों की तुड़ाई करें, क्योंकि इस समय का तापमान कम होता है। इस छोटे से उपाय से सब्जियों की ताजगी, गुणवत्ता और जो उनके भंडारण की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है।
1: कृषि सामयिकी में किसान भाई सुन रहे थे टमाटर, बैंगन, मिर्च के लिए सुझाव। मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर। 9 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम होगा, लोक रसधार, कलाकार होंगे मिठाई लाल चक्रवर्ती। 9:15 पर गांधी चर्चा, 9:30 पर फिल्म संगीत, 10:05 पर गौरव गानी की 150वीं वंदे मातरम, 10:20 पर सारंगा, फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

दिन में 1:01 आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, दिन में 2:00 फिल्म संगीत। हमारी दूसरी सभा शाम 5:00 आरंभ होगी न्यूज हेडलाइन से। 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युवाणी। 5:33 पर फिल्म संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा शाम 6:00। लोक संगीत शाम 6:30 पर, कलाकार होंगे मनमोहन शर्मा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा तापसी नागराज के गए गीत और भजन। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर, इसमें सुनिएगा डॉक्टर पी के जैन से ली गई भेंटवार्ता, फल बागों के लिए भूमि की तैयारी। सुर्खियों में रात 8:00 भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। फिल्म संगीत 8:15 पर, रात 9:15 पर स्पॉटलाइट दिल्ली केंद्र से, 9:30 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विगत 12 मई को शहीद स्मारक सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सुर संध्या सभा के संवादित अंश आप सुन सकते हैं। शास्त्रीय संगीत रात 10:00, कलाकार होंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन आपको सुनवाएंगे रात 10:30 पर। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में, और 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्यारभ्य यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, इटलीति देशानां षड्दिवसीययात्रायां भविष्यति. पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति. द्विपक्षीयविषयेषु विशेषतः ऊर्जासहकार्ये तथैव परस्परहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रियविषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदानप्रदानं करिष्यतः. मेलनमिदं ऊर्जासुरक्षाविषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते. प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीयसङ्घः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सततविकासं प्रवर्धयितुम्, आर्थिकशक्तिं प्रवर्धयितुम्, अधिकसमावेशीयविश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यति. ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डलप्रमुखैस्सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानाम् अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विकदक्षिणस्य आकाङ्क्षाणां विकासाय च ब्रिक्स सङ्घः महत्त्वपूर्णमञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते. केन्द्रसर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तम् असंस्कृततैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल इन्धनस्य, प्राकृतिक अनिलेन्धनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभाविपदानि गृहीतानि सन्ति. ह्यः नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम् प्राकृतिक अनिलमन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवपदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल इन्धनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति. नीट इति आगामी राष्ट्रियपात्रतासहितप्रवेशपरीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीयसभा आयोजिता. सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च सञ्चालनस्य विविधपक्षेषु विस्तृतविमर्शाः कृताः. रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीसत्यसायीमण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेकवैमानिकरक्षापरियोजनानाम् आधारशिलास्थापनकार्यक्रमे भागं गृहीष्यति. रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमानविकाससंस्थायाः विमानसमायोजनस्य उड्डयनपरीक्षणकेन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति. विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नतमध्यमयुद्धविमानकार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति. केन्द्रीयग्रामीणविकासमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवासयोजनायाः लाभार्थिसम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कारवितरणसमारोहे च भागं गृहीष्यति. उत्तरप्रदेशे विगत 37 होरासु झञ्झावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिस्सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः वृणिताः सन्ति. मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः जिल्लाधिकारीं तथा सम्बन्धित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्. उधमपुरामण्डलस्य शिवपार्वतीतीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वतीमेला इति प्रसिद्धा वार्षिकमौङ्गरिमेला अद्य आरभ्यते. धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरमण्डलप्रशासनेन मौङ्गरि इत्यत्र सर् दब्बर् क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिकमेलायाः सज्जता कृता वर्तते. केन्द्रसर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति. अग्रिमप्राधिकरणयोजनायाः अन्तर्गतम् आभूषणनिर्यातकाः शून्यशुल्केन असंस्कृतवस्तूनाम् अथवा निवेशसामग्रीणाम् आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति. IPL इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियन्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्. अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के

देश में पिछले दो दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पांच देशों की छह दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर सिंहस्थ कृषि, सिंचाई और यूसीसी जैसे मुद्दों पर किया मंथन। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री ने जाना हाल। मामले में आरोपी संचालक गिरफ्तार, फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त। और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में आज तीव्र लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की छह दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा से पहले मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष यूएई भारत के कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने भारत की लगभग 11% आवश्यकता को पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस के साथ लगभग 45 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की इन बैठकों को मध्य प्रदेश के विकास एजेंडे और आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्री शाह से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान की जानकारी दी।
1: हमारे राज्य के अंदर के नक्सल जिले जो एक तरह से देश के अंदर मध्यप्रदेश का मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का इलाका जो एक राज्य के नाते से नक्सल मुक्त हुआ, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में, माननीय गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और उन्होंने हमारे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के नए कानूनों को लागू करने की जिस तरह से मैकेनिज्म पे मध्यप्रदेश सरकार काम कर रही है, उससे हमने संतोष व्यक्त किया।
0: वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के हित में केंद्र सरकार से गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है।
1: प्रहलाद जोशी जी से मुलाकात हुई। हमारे लिए राज्य में गेहूं खरीदी को लेकर के देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं की परचेसिंग अगर कहीं हुई है तो मध्यप्रदेश में हुई। 16 लाख मीट्रिक टन का हमारा टारगेट है। आज तक 75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हम गेहूं जमा कर चुके हैं। ऐसे में 100 लाख से भी ऊपर जाने के कारण से हमने प्रहलाद जोशी जी से निवेदन किया कि वो हमारा टारगेट बढ़ाए ताकि हम और अधिक किसानों से गेहूं खरीद सके।
0: दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने एक सकारात्मक पहल करते हुए मेट्रो से सफर कर सार्वजनिक

0: परिवहन व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में कमी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी मेट्रो बहुत उपयोगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसों में घायल नागरिकों से भेंट कर उनके उपचार की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक इस हादसे में 4 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। हादसे में 27 लोग घायल हुए थे, जिन्हें देवास और इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। देवास जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी पवन पाटीदार ने घायलों को लेकर जानकारी दी।
1: हमारे पास सुबह 3:30 बजे खबर आई थी कि कला के पास में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है। पास में जो स्थिति थी उसमें कम से कम हमारे पास 28 लोग आए थे, जिसमें से हमने 13 लोगों को यहां से रेफर कर दिया इंदौर के लिए, ताकि 12 लोग हमारे पास स्थिति नॉर्मल थी तो हमने एडमिट कर लिया। मृतकों की एक संख्या बढ़ी थी 4 से।
0: इस बीच पटाखा फैक्ट्री विस्फोट और आगजनी मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री मालिक अनिल मालवी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इधर संभागायुक्त आशीष सिंह ने टोंककला में संचालित आतिशबाजी विनिर्माण एवं विक्रय फैक्ट्री में हुई घटना की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश जारी किए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, CBSE के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर आज शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का शुभारंभ करेंगी। भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसुमरिया और स्थानीय विधायक भगवान दास सबनानी उपस्थित रहेंगे। भोपाल, रायसेन और नर्मदापुरम जिलों के प्रतिभागी छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यह योजना प्रदेश के 20 चयनित जिलों में संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य OBC वर्ग के प्रतिभावान युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य अर्धसैनिक बलों की भर्ती परीक्षाओं के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। योजना में प्रदेश भर से चयनित 4,000 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। IPL में मुंबई इंडियंस ने कल धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 8 विकेट पर 200 रन बनाए, जिसके जवाब में 201 रन का लक्ष्य मुंबई ने 6 विकेट और एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। राजनीति में शक्ति प्रदर्शन और VIP संस्कृति पर बड़ा प्रहार करते हुए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की है। उज्जैन से भोपाल लगभग 200 गाड़ियों के काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने पहुंचे ठाकुर को मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही मामले के निराकरण तक उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश हीट वेव यानी लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में 15, 16 और 17 मई को तीव्र लू की चेतावनी जारी की है। वहीं नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा और झाबुआ में भी तीव्र लू चलेगी। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, सागर और रीवा संभाग के जिलों में 18 मई तक लू चलने की संभावना है। इसके पहले कल शाजापुर और छतरपुर के नौगांव में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों शहर प्रदेश के सबसे गर्म शहर रहे। वहीं 9 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के शासकीय नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत आज से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। आगरमालवा के सुसनेर ITI में युवा संगम के तहत आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के सांदीपनी विद्यालय प्रांगण अमरपुर में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामूहिक विवाह समारोह में 166 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। मंडला के रामनगर में आज से 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम शामिल होंगे। गुना में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बरसाती नदी एवं सिद्ध की झिरिया क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया और कलेक्टर शाजापुर ने आगामी त्योहारों के चलते प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत बिना

अनुमति, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर सिंहस्थ, कृषि, सिंचाई और यूसीसी जैसे मुद्दों पर किया मंथन। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री ने जाना हाल। मामले में आरोपी संचालक गिरफ्तार, फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त। और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में आज तीव्र लू चलने की चेतावनी जारी की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी।
2: मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

श्रोताओ, स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। आज है 15 मई। 15 मई भर नहीं है, आज एक विशेष दिवस है। आज है विश्व परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। हर साल 15 मई को ये मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 में परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ये दिन हमें समाज में परिवार के महत्व, उनके कल्याण और आपसी संबंधों को मजबूत करने का संदेश देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रस्ताव पारित कर हर साल इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। हर साल इसे एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, जो परिवार और समाज के बदलते परिवेश पर केंद्रित होती है। इसका सांस्कृतिक महत्व जो है, भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, इसकी भावना निहित है। इसलिए भारत में इस दिवस का विशेष महत्व है। 15 मई के अलावा शांति और साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 जनवरी को भी वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये तो हुई बात विश्व परिवार दिवस की और इसका जो उद्देश्य है मनाने का, हम क्यों मनाते हैं और इससे हमें जीवन में क्या समझने को मिलता है। हर साल इसकी एक थीम दी जाती है। जैसे ये 2026 की बात करें तो इसके आयोजन का जो विषय है वो परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण, इस बात पर जोर देता है कि बढ़ती असमानताएं पारिवारिक जीवन को कैसे आकार दे रही

हैं और बच्चों के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रही हैं। ये असमानताओं को कम करने और स्वस्थ बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत परिवार केंद्रित नीतियों में अधिक निवेश का आह्वान करती है। परिवार सामाजिक और आर्थिक प्रगति के केंद्र में है, फिर भी कई परिवारों को उनकी जो आय की सुरक्षा परिवारों की उनकी आय की असुरक्षा, सीमित देखभाल, सहायता और आवश्यक सेवाओं तक असमान पहुंच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त सहायता के अभाव में छोटे बच्चों वाले परिवारों में गरीबी का खतरा बढ़ जाता है, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। आय की अस्थिरता, सीमित देखभाल, सहायता और सेवाओं तक सीमित पहुंच बच्चों के विकास में बाधा डाल सकती है, विशेष रूप से जब इसमें लिंग, नस्ल, प्रवासी या विकलांगता आधारित असमानताएं भी जुड़ जाती हैं। वैश्विक असमानताओं के बढ़ने के साथ इस वर्ष का आयोजन आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल पहुंच और आवश्यक सेवाओं में मौजूद उन कमियों पर प्रकाश डालेगा जो बच्चों के जीवन की संभावनाओं को प्रभावित करती हैं। ये आयोजन परिवारों की मजबूती बढ़ाने, गरीबी कम करने और समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों, जिसमें बाल लाभ, माता पिता की छुट्टी, किफायती बाल देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा शामिल है, इसकी आवश्यकता पर बल देगा। यह आयोजन सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं और नागरिक समाज के बीच संवाद को बढ़ावा देगा, अच्छी नीतिगत प्रथाओं को उजागर करेगा और 2030 एजेंडा के संदर्भ में असमानता के रुझानों और नीतिगत समाधानों की जांच करने वाला एक नए शोध पत्र का शुभ आरंभ करेगा। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1980 के दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने परिवार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। 1983 में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक विकास आयोग ने विकास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका पर अपने प्रस्ताव में महासचिव से निर्णय निर्माताओं और जनता के बीच परिवार की समस्याओं और ज़रूरतों के साथ साथ उन ज़रूरतों को पूरा करने के प्रभावी तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया। 29 मई 1985 के अपने संकल्प में परिषद ने महासभा को अपने 41वें सत्र के अंतिम एजेंडा में विकास प्रक्रिया में परिवार शीर्षक वाले एक विषय को शामिल करने की संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि महासचिव से संबंधित मुद्दों के बारे में वैश्विक जागरूकता विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करने के अनुरोध पर विचार किया जा सके, जो सरकारों, अंतर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और जनता की ओर निर्देशित हों। बाद में सामाजिक विकास आयोग की 30वीं सत्र की बैठक में तैयार की गई नई सिफारिशों के आधार पर महासभा ने सभी राज्यों को परिवार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की संभावित घोषणा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने और अपनी टिप्पणियां और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। तो श्रोता, ये तो मोटी मोटी बात हुई ये विश्व परिवार दिवस की, और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

सज्जन पुरुष श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आपने सुना, कैलाश खेर की आवाज में गीतकार थे। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे विश्व परिवार दिवस की। उन्नीस में संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। 25 सितंबर

2015 को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जो गरीबी, भेदभाव, दुर्व्यवहार और रोकी जा सकने वाली मौतों को समाप्त करने, पर्यावरणीय विनाश को रोकने और सभी लोगों के लिए हर जगह विकास के युग की शुरुआत करने के उद्देश्य से निर्धारित 17 लक्ष्यों वाला एक समूह है। इन लक्ष्यों में से कई की प्राप्ति के लिए परिवार और परिवार केंद्रित नीतियां और कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व भर में लगभग 80% कृषि भूमि पारिवारिक कृषि भूमि है, जो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। विकासशील देशों में पारिवारिक किसानों को जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की पैदावार में गिरावट, बढ़ती गरीबी और खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चरम मौसम खाद्य उत्पादन और क्रय शक्ति दोनों को कम कर देता है। विकासशील देशों में कम आय वाले परिवार जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों और कमज़ोर बुनियादी ढांचे पर निर्भर होते हैं, जिससे वे चरम मौसम का सामना करने में कम सक्षम होते हैं। परिवार पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाकर अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, जैसे ऊर्जा बचाना, कचरा कम करना और कम मांस और डेयरी उत्पाद खाना, जिससे भोजन से संबंधित उत्सर्जन में 73% तक की कमी आ सकती है। ये परिवार के बारे में। जलवायु परिवर्तन ने हमारे भविष्य के बारे में अनिश्चितता का स्तर बढ़ा दिया। दुनिया भर में युवाओं की अभूतपूर्व लामबंदी ये दर्शाती है कि निर्णय लेने वालों को जवाबदेह ठहराने की उनमें कितनी अपार शक्ति है। उनका संदेश स्पष्ट है, पिछली पीढ़ी विफल रही और इसका पूरा खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ेगा अपने भविष्य के साथ। तो ये तो बातें हुई विश्व परिवार दिवस की। और श्रोताओं, अब सुनिए ये गीत।

आज की आवाज़ ये नाम है फिल्म का, जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। गायक थे महेंद्र कपूर, गीत लिखा था हसन कमाल ने, संगीत रवि का था।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आज आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जयंती है।

श्रोताओ, हम बात कर रहे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में उनका नाम लिया जाता है, जिन्होंने न केवल हिंदी भाषा को अनुशासित और व्यवस्थित किया, बल्कि उसे आधुनिक चेतना, बौद्धिक गंभीरता और राष्ट्रीय भावबोध से भी संपन्न किया। उनके साहित्यिक योगदान के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में एक पूरे युग को उनके नाम पर द्विवेदी युग कहा गया। ये युग मुख्यतः 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जब हिंदी गद्य और कविता दोनों ही क्षेत्रों में निर्णायक परिवर्तन देखने को मिले। द्विवेदी जी ने उस समय हिंदी साहित्य को दिशा प्रदान की जब भाषा व्यवस्थित थी, गद्य अराजक था, काव्य में विषयगत सीमाएं थी और साहित्य का सामाजिक उद्देश्य अस्पष्ट था। उन्होंने साहित्य को संस्कार, शुद्धता, तर्क, नीति और समाज सुधार से जोड़ा। उनका संपूर्ण साहित्यिक जीवन हिंदी भाषा को एक सशक्त, सक्षम और प्रतिष्ठित राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए समर्पित रहा। भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन तीव्र हो रहे थे। अंग्रेजी शासन के प्रभाव, पश्चिमी शिक्षा, नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना के उदय ने भारतीय समाज को झकझोर दिया था। हिंदी साहित्य भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा। इस समय तक हिंदी कविता में ब्रजभाषा का प्रभुत्व था और गद्य में स्पष्ट मानक रूप का अभाव था। भाषा में अशुद्धता, विषयों में हल्कापन और शैली में अनियमितता व्यापक थी। ऐसे समय में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का उदय हुआ, जिन्होंने हिंदी को न केवल भाषाई अनुशासन दिया बल्कि उसे आधुनिक विचारधारा का माध्यम भी बनाया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी गद्य के शिल्पकार तथा द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके संपादन और लेखन ने हिंदी भाषा को अनुशासन, शुद्धता और वैचारिक स्पष्टता प्रदान की। इनका जन्म 15 मई

1864 को हुआ था, दौलतपुर गांव जो रायबरेली उत्तर प्रदेश में है वहाँ। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी था। इनकी भाषा शैली शुद्ध परिनिष्ठित संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली युक्त हिंदी थी। देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की इनकी विचारधारा थी। अगर साहित्यिक आंदोलन की बात करें तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से इनका संबंध रहा। सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो रघुवंश, हिंदी महाभारत, ऋतु तरंगणी, कुमार संभवसार, किरातार्जुनीय अद्भुत आलाप, सुकवि संकीर्तन, साहित्य संदर्भ, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, ये इनकी रचनाएं थी। द्विवेदी जी ने औपचारिक शिक्षा के अभाव में भी स्वाध्याय को अपना जीवन साधन बनाना। उन्होंने अपने प्रयासों से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, गुजराती और फारसी जैसे भाषाओं का गहन अध्ययन किया। वहीं बहुभाषिक ज्ञान आगे चलकर उनके अनुवाद कार्य, आलोचना दृष्टि और भाषाई सुधार का आधार बना। रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई को जब उनका जन्म हुआ, वे एक कन्याकुब्ज परिवार, ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। उनके पिता पंडित राम साहेब द्विवेदी, जो धार्मिक प्रवृत्ति के संस्कारवान और परंपरागत मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। पारिवारिक वातावरण सादा, अनुशासित और नैतिक मूल्यों से युक्त था, जिसने द्विवेदी जी के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, जिसके कारण उन्हें औपचारिक शिक्षा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अभाव, संघर्ष और आत्मनिर्भरता का अनुभव किया। यही परिस्थितियां आगे चलकर उनके जीवन में परिश्रमशीलता, अनुशासन और आत्मसंयम जैसे गुणों का विकास करने में सहायक बनी। पारिवारिक संस्कारों ने उनमें धार्मिक भावना, नैतिक दृष्टि और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की चेतना जागृत की। आर्थिक सीमाओं के बावजूद परिवार में विद्या, अध्ययन और संस्कारों को महत्व दिया जाता था। इसी कारण द्विवेदी जी में प्रारंभ से ही अध्ययनशीलता और आत्मविकास की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी, जो आगे चलकर उनके साहित्यिक और भाषिक योगदान का आधार बनी। इस प्रकार जन्मस्थल और पारिवारिक पृष्ठभूमि ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व को संघर्षशील, संस्कारयुक्त और कर्तव्यनिष्ठ स्वरूप प्रदान किया, जिसने उन्हें आगे चलकर हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक आचार्य बनने की दिशा में प्रेरित किया।

गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे भरत व्यास, संगीतकार वसंत देसाई। अब चलते चलते सुनते हैं ये गीत। इसे लिखा है कौसर मुनीर ने, तर्ज बनाई है प्रीतम ने, गायक हैं अदनान सामी, फिल्म है बजरंगी भाईचंद।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
3: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: डीजल की कीमत 90 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये 68 पैसे और डीजल 93 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपये 74 पैसे और डीजल 95 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 77 पैसे और डीजल का मूल्य 95 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

0: यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नवभारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
1: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

राहत फतेह अली खां की आवाज़ में संजय मासूम का लिखा ये गीत आपने सुना। संगीतकार थे प्रीतम और फिल्म का नाम जन्नत टू। अब सुनिए अलका याग्निक सुखविंदर शंकर महादेवन की आवाज़ में समीर के बोल। तर्ज बनाई है दिलीप सेन समीर सेन ने। फिल्म का नाम है इतिहास।

अभी आपने फिल्म इतिहास का ये गीत सुना, अलका याग्निक सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन की आवाज़ में। अब आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार।

अब सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म है रोटी। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुलाकात की। अब तक इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में 27 लोग घायल हुए हैं। फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से

0: संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। भोपाल के समन्वय भवन में आज पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी। योजना में प्रदेश भर से चयनित 4,000 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में कल धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। 201 रनों का लक्ष्य मुंबई ने 6 विकेट और 1 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं मिठाई लाल चक्रवर्ती का गाया ये बुंदेली लोकगीत। पहले सुनिए ये पारंपरिक लोक भजन।

0: संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से हमें इजाजत दें, नमस्कार। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

जिस प्रकार अनचाहे युद्ध से सिपाही को प्रशिक्षण मिल जाता है, उसी प्रकार दमन से सत्याग्रही प्रशिक्षित होता है। सत्याग्रहियों को दमन के कारणों का पता लगाना चाहिए। वे पाएंगे कि दमित व्यक्ति किंचित शक्ति प्रदर्शन से ही सरलतापूर्वक डर जाते हैं और पीड़ा भोग तथा आत्म बलिदान के लिए तैयार नहीं होते। यही सत्याग्रह के प्रथम पाठ पढ़ने का समय होता है। जिन्हें सत्याग्रह के अतुल बल का थोड़ा सा भी ज्ञान है, उन्हें अपने पड़ोसियों को कमजोरी तथा लाचारी के साथ नहीं बल्कि बहादुरी के साथ और जानबूझकर दमन को बर्दाश्त करना सिखाना चाहिए। तब भी तैयारी के अनुत्तेजक नियम सत्याग्रह के प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब तक सत्याग्रह का इच्छुक व्यक्ति प्रशिक्षण के आवश्यक चरणों से नहीं गुजरेगा, जो बड़ा जानमारू काम है, तब तक वह प्रबल एवं सक्रिय अहिंसा का विकास नहीं कर सकता। जब तक दुर्भाव है, तब तक सत्याग्रह की स्पष्ट विजय असंभव है। लेकिन जो अपने को दुर्बल समझते हैं, वे प्रेम करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल ये संकल्प करें, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं केवल ईश्वर से डरूंगा, मैं किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखूंगा, मैं किसी का अन्याय सहन नहीं करूंगा, मैं असत्य पर सत्य से विजय प्राप्त करूंगा और असत्य का प्रतिकार करते हुए हर प्रकार की पीड़ा को भोगने के लिए तैयार रहूंगा। सत्याग्रही के लिए समय की कोई सीमा नहीं होती, न उसकी पीड़ा भोग की क्षमता की कोई सीमा होती है। इसलिए सत्याग्रह में पराजय नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि देह को कम महत्व देने के कारण मैं सत्याग्रह में हजारों लोगों को स्वेच्छा से प्राणों का उत्सर्ग करते हुए देखकर प्रसन्न होता हूं। बात यह है कि मैं ये जानता हूं कि दीर्घकाल में सत्याग्रह में प्राणों की हानि न्यूनतम होती है और ये बलिदानियों का उदात्तीकरण तो करती ही है। उनके बलिदान से पृथ्वी का भी उदात्तीकरण होता है। एक बार ये चीज शुरू हो जाए और यदि ये काफी गहन हो तो इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो सकता है। आत्मा की उच्चतम अभिव्यक्ति होने के कारण ये महानतम बल है। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग और अब प्रस्तुत है भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, वाचक और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है कहानी नेवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड नई पुरानी। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: Film
1: मीडियम व्यापार आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। पहले आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम आपस की बात। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

लता मंगेशकर की आवाज़ में श्रोताओं अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म समाधि का ये गीत। संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। गीतकार थे फारूक कैसर, संगीतकार बप्पी लहरी, फिल्म का नाम लहू के दो रंग। अब सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म है इंकार। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत राजेश रोशन का है।

किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल का गाया ये गीत आपने सुना, फिल्म थी जानी दुश्मन। गीत लिखा था वर्मा मलिक ने, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

शिल्पा शंकर महादेवन की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, समीर का लिखा हुआ, संगीत शंकर एहसान लाएगा था और फिल्म थी सलाम इश्क। इसके साथ ये कार्य

0: कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम में
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण का कार्य 1 मई से प्रारंभ किया गया, जो 30 मई तक चलेगा। मकान सूचीकरण के लिए जिले में 2985 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें से 2180 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में मकान सूचीकरण पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार जिले में मकान का सूचीकरण 73% तक पूरा हो चुका है। जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डीपी वर्मन ने बताया कि नगरपालिका मलाजखंड द्वारा 14 मई को ही मकान सूचीकरण का 100% कार्य पूर्ण कर लिया गया और बालाघाट जिले में 14 मई तक 73% मकान सूचीकरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के खातों में 1500-1500 रुपये की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 36वीं किस्त के रूप में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई, जिनमें बालाघाट जिले की 3,44,240 लाडली बहनों के खातों में 50,11,37,100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बालाघाट जिले में मलेरिया उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की थीम मलेरिया समाप्ति के लिए संकल्पित अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा रही। इसी क्रम में जिला मुख्यालय बालाघाट में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मलेरिया की रोकथाम और उन्मूलन के लिए सामूहिक संकल्प लिया। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा पंचायत विभाग के सहयोग से जिले भर में जन जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस दौरान बैनर, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से मलेरिया से बचाव, रोकथाम और समय पर उपचार संबंधी जानकारियां आमजनों तक पहुंचाई गईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में संचालित जैव विविधता संरक्षण के अगले अध्याय के रूप में पिछले दिनों जंगली भैंसे की पुनर्स्थापना योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से लाए जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना के लिए उन्हें बालाघाट जिले के सूपखार क्षेत्र में सॉफ्ट रिलीज किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश के लिए यह दिन ऐतिहासिक है। लगभग 100 वर्ष के बाद प्रदेश की धरती पर जंगली भैंस का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्य हो रहा है। बालाघाट जिले के जंगल में छोड़े गए जंगली भैंसों में से 3 मादा और 1 नर शामिल है। जिले में टाइप 1 डायबिटीज T1D से प्रभावित बच्चों और मरीजों की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय बालाघाट में एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा मुस्कान OPD में प्रत्येक शुक्रवार को T1D फॉलोअप क्लिनिक संचालित किया जा रहा है, जहां मरीजों को अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क उपचार, विशेषज्ञ परामर्श, मधुमेह शिक्षा तथा इंसुलिन उपलब्ध कराई जा रही है। ये क्लिनिक प्रत्येक शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालित होता है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 8 मई को क्लिनिक का निरीक्षण कर वहां उपचार प्राप्त कर रहे बच्चों एवं चिकित्सकों से चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित बच्चों को निशुल्क ग्लूकोमीटर एवं इंसुलिन का वितरण भी किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को जिला न्यायालय बालाघाट सहित जिले के कुल 24 न्यायिक खंडपीठों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में कुल 1085 प्रकरण विचारार्थ रखे गए, जिनमें से 1009 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्री लिटिगेशन के 835 प्रकरणों में से 780 प्रकरणों का निराकरण कर 1,60,91,443 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। वहीं न्यायालयों में लंबित 250 प्रकरणों में 229 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिससे 1,57,47,930 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। इस प्रकार कुल 3,18,39,373 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। खेल और युवा कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में संचालित आरोह 2026 महाअभियान के अंतर्गत जिले में 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बालाघाट के मुल्ला स्टेडियम मैदान, कराटे इंडोर हॉल, म्यूनिसिपल ग्राउंड, शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉकी फीडर सेंटर सहित जिला एवं विकासखंड मुख्यालयों पर नए स्वरूप में खेल शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इस शिविर के दौरान खेल प्रशिक्षण के साथ जुम्बा एक्सरसाइज, योगाभ्यास, आत्मरक्षा प्रशिक्षण तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने जैसी गतिविधियां भी कराई जा रही हैं। इसके अलावा FM रेडियो आकाशवाणी बालाघाट के माध्यम से भी खेल शिविर की गतिविधियां

श्रोताओं, वंदे मातरम के गौरवशाली इतिहास और इसकी डेढ़ सदी 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है जो स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा प्रेरणा मंत्र रहा है। इसके इतिहास और महत्व से जुड़े जो बिंदु हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को की थी। बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल किया गया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने इसे जन गण मन के समान दर्जा देते हुए राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। हाल ही में राष्ट्र ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भव्य स्मरण उत्सव मनाया है। वंदे मातरम हमारा गौरव है, इसकी पहचान है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के डेढ़ सौ गौरवशाली वर्षों के स्मरण उत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में ये गूंज रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न पूरा देश मनाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत और भारतीयों को जागृत करने के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसकी रचना की गई। वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार फान को महसूस किया है। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विश्व दर्पण। इससे दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर तनाव के बावजूद सहयोग पर जोर।

0: की राजधानी कीव पर रूस के हमले में 21 लोगों की मौत, 45 घायल। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के बीच क्यूबा में अधिकारियों से मुलाकात की। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आज ही नीदरलैंड्स के लिए रवाना होंगे और राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी रविवार को स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे और वहां के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 18 मई को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वे 19 मई को इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के रूप में ये उनकी पहली चीन यात्रा है।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन ने पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका से अधिक मात्रा में तेल खरीदने में भी रुचि दिखाई। ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर लगाए उच्च शुल्कों को समाप्त कर दिया था, जबकि चीन दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति को प्रतिबंधित न करने पर सहमत हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अमेरिकी चैनल को बताया कि चीन ने 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमति जताई है, जो लगभग एक दशक में बोइंग की पहली बड़ी खरीद है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के न्याय विभाग ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दायर मुकदमे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में काम करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कानूनी अनुशासनात्मक प्रणाली का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।
4: ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार कार्यालय के उस अधिकार को चुनौती देता है जो अमेरिका में अधिवक्ताओं के लिए नैतिकता और कदाचार के मामलों की जांच करता है। मुकदमे में मुख्य रूप से न्याय विभाग के पूर्व अधिवक्ता जेफ्री क्लार्क का नाम शामिल है, जिन पर वर्ष 2020 में चुनाव परिणामों को पलटने के प्रयासों में शामिल होने का आरोप है। मुकदमे में ट्रंप के वफादार और वर्तमान में क्षमादान मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता एड मार्टिन का भी नाम शामिल है। न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीसी के अधिकारियों को यह तय नहीं करना चाहिए कि केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने

0: आधिकारिक कर्तव्यों या संवैधानिक जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन किया है या नहीं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के मद्देनजर क्यूबा की राजधानी हवाना में अपने समकक्ष और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने खुफिया जानकारी साझा करने, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर भी चर्चा की। अमरीका ने क्यूबा को ईंधन संकट से निपटने में मदद करने के लिए $10 करोड़ की सहायता की पेशकश को नवीनीकृत किया है। क्यूबा ने कहा है कि वे सहायता पर चर्चा के लिए तैयार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 21 लोगों की मृत्यु हो गई है और 45 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं।
2: यूक्रेन के आपातकालीन सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में घर, एक स्कूल, एक पशु अस्पताल और अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी। यह हमला कीव को निशाना बनाकर किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि इनमें से अधिकांश को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें आवासीय क्षेत्रों में गिरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले से पता चलता है कि रूस युद्ध समाप्त करने के बारे में गंभीर नहीं है। उधर रूस ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की सेना को समर्थन देने वाले सैन्य और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाकर किए गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों सहित कई देशों ने हमलों की निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इसराइल और लेबनान के अधिकारियों ने वॉशिंगटन में तीसरे दौर की शांति वार्ता की। इसमें हिजबुल्ला को समाप्त करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने पर चर्चा हुई। वार्ता आज भी जारी है। अभी तक इसमें किसी महत्वपूर्ण प्रगति के समाचार नहीं है।
3: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसराइल अंतिम समझौते तक हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने की स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। वहीं लेबनान इसराइल से लेबनानी क्षेत्र से हटने, हवाई हमले रोकने और सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई समाप्त करने की मांग कर रहा है। हालिया संघर्ष 2 मार्च को हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद शुरू हुआ। 24 अप्रैल को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का सुझाव दिया था। बाद में 26 अप्रैल को इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर और कड़े हमले करने का आदेश दिया। तब से इसराइल की सेना ने लेबनान से बार बार रॉकेट लॉन्च होने की खबर दी है और कहा है कि उसने हिजबुल्ला के कई ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल ने इस पर्वतरोहण सत्र में रिकॉर्ड 492 पर्वतरोहियों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए अनुमति पत्र जारी किए हैं। ये आंकड़ा 2023 में जारी किए गए 489 अनुमति पत्रों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गोंगो को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलो और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं, जबकि सांडा एक आधुनिक बिना हथियार वाली स्पर्धा है। इसमें मुक्का मारना, लात मारना, फेंकना, कुश्ती और बचाव की तकनीक का इस्तेमाल होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर तनाव के बावजूद सहयोग पर जोर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में 21 लोगों की मौत, 45 घायल। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के बीच क्यूबा में अधिकारियों से मुलाकात की। और वुशू में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत। गायिका है मोनाली ठाकुर, संगीतकार अमित त्रिवेदी, फिल्म है लुटेरा। फरमाइश करते हैं इस गीत के लिए सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल बजाज,

दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी, रौनक सेन।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिए गुलजार का लिखा गीत। संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन। फिल्म है आंधी। अनुरोध आप सबका।

ग्राम बग बुड़बा पथरिया से नरेन नेताम कुसुम नेताम मोरटक्का माफी खंडवा से जगन्नाथ पटेल कमला पटेल अंतिम ज्योति ललित मनीषा शुभम देवी किशन भावना कनिका आदित्य मानस मन पटेल छत्तीसगढ़ बेमेतरा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भव्या सुषमा सारथी मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत सीमा शारदा दामिनी वर्मा।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत। सुनना चाहते हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ज्योति, बाबू रियाज ठाकुर, कंवर कॉलोनी बड़वास से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य दीति, शिवानी, मीनू राज श्रीमाली, बिलहरी बड़खेरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारीलाल बढ़ई, लालू गोलू, सोनी शेख, जमील मुन्ना और बिसरत, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु, अंकिता, अमृता, लोकेश जोशी।

अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आरती का ये नगमा, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम रेशमा आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन वली डोम, डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, अकरम आसमा, उल्लाह आसमा, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, नागपुर से वैशाली।

शैलेश, श्वेता, सुमित, ध्वनि। परभणी से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी।

अब सुनिए फिल्म अभिमान का ये गीत, लता मंगेशकर और मनहर की आवाज़ में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत एसडी बर्मन का है। सुनना चाहते हैं राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू, लता, आदित्य, कृष, श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लबी श्रीवास्तव। राजपुर से घिस्सू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ, कुणाल। बस स्टैंड बंडा से लक्ष्मण रैकवार, विनीता लल्लू, हल्ले ऋषि, दीपेश वैशाली, वैष्णवी रैकवार। प्रमिलागंज आलोट से जिला रतलाम, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा।

अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, फिल्म है अनपढ़, आवाज लता मंगेशकर की है। सुनना चाहते हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल राय, शेरपुर कला से अवधेश प्रीति नवनीत राय, पित्रामल बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूडत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूडत, दिलीशर मोरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा, आकाश कुमार।

हेमंत कुमार की आवाज़ में लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा गीत, संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने और फिल्म है राहगीर। अनुरोध करने वाले श्रोता हैं बरेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बा शेरे, पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, बी टी वाडोदे, चंद्रप्रभा वाडोदे, धुर्राबांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। सुनना चाहते हैं पटेल नगर मलोड़ से रमेश कुमार जौजरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू, यंग रेडियो लिसनर्स, खोवा मंडी, जवाहरगंज, जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया, शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी, लक्की, रोली, श्वेता और परु, बिरसिंहपुर पाली उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा, अरुण विश्वकर्मा, खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, संदीप माधुरी, पिंटू जयश्री, राजेश अंजलि खंडाले।

0: इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:58 होने वाले हैं। न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम रिले कर रहे हैं।
1: प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। इससे पहले हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने प्रवास के दौरान मेट्रो ट्रेन से सफर कर मितव्ययिता का उदाहरण प्रस्तुत किया। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। भोपाल के समन्वय भवन में आज पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना का शुभारम्भ करेंगी। योजना में प्रदेश भर से चयनित 4,000 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश लू की चपेट में है। कल शाजापुर और छतरपुर के नौगांव में सबसे अधिक तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा और झाबुआ जिले के लिए तीव्र लू चलने की चेतावनी जारी की है और राज्य फेंसिंग अकादमी भोपाल के खिलाड़ी खुशी दाभाड़े का चयन प्रतिष्ठित FII महिला AP विश्व कप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 22 से 24 मई तक फ्रांस में आयोजित की जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने।
3: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। श्रोताओं, हमारा फोन नंबर है

0: 2660902 और भोपाल के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड लगा सकते हैं 0755। हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे, यदि आपका फोन कार्यक्रम में हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया ना लगाएं और हमारे नए श्रोताओं को मौका दें। और अब हम देखते हैं कि हमारे पहले श्रोता कौन हैं। हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या हाल है?
1: बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, महीने साल भर का ऐसा लग रहा है मुझे।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिए वो क्या होता है, दिल से दिल की राह होती है ना।
1: जी जी
0: जी जी।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा।
0: मांगीलाल जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल आपकी दुआ से बढ़िया है और सब आनंद है, और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया। सर जी, फिल्म का नाम रहेगा शहनाई।
0: शहनाई
1: जी,
0: अरे वाह, क्या वाली पुरानी वाली शहनाई। चलिए, तो आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम
1: कुछ मित्रों को याद कर सकते
0: हैं? हाँ बिल्कुल, कर लीजिए।
1: दिनकर सिंह जी है चित्रकूट धाम से, और फूलचंद पाल जी है मनकारी से, प्रेमदास बाबा जी है, बेटा सिंह यादव जी है, केसरी सिंह राजपूत जी है, राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी है, नरेश प्रजापति जी है, गजराज लोधी जी है, इन सभी को सर जी यह गाना डेडिकेट रहे।
2: न झटको जुल्फ से पान

0: कार्यक्रम फोन करेंगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: बीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का, इंदौर से।
0: इंदौर से आप?
1: बीना भी

0: ज्यादा पढ़ रही है।
1: हाँ, तो
0: आप क्या भी पढ़ रहे हो, क्योंकि आप अभी पास नहीं हो हमारे कोई ज्यादा दूर
1: हाँ,
0: नहीं
1: हम लोग जरा सूरज के करीब हैं थोड़े से।
0: है।
1: अच्छा बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे।
0: इनका नाम वक्त की आवाज और गाने की बोल है।

0: कार्यक्रम फोन करें कि सुने में आपका स्वागत है, आपने कॉल किया है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए।
1: सर मैं शिवानी मेरा बात कर रही नीमच से।
0: अच्छा शिवानी, कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: सर मूवी का नाम है जीने की राह, गाने के बोले आने से उसके आए बाहर।
0: नीमच में गर्मी वगैरह कैसी पड़ रही है?
1: सर बहुत गर्मी है यहाँ तो।
0: और ये है कि इतनी गर्मी में आप कौन सा गाना सुनना चाह रही हैं?
1: जीने की राह।
0: नहीं नहीं गाने के बोल क्या हैं?
1: गाने के बोल हैं आने से उसके आए बाहर।
0: हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतनी गर्मी में किसी के आने से
1: बारिश हो जाए सर तो अच्छा है।
0: अच्छा चलिए सही बात है
1: सर, गर्मी तो बहुत है और यहाँ तो लाइटें भी चली गई है।
0: अभी चली गई या बहुत देर से गई है?
1: नहीं सर सुबह से गई है यहाँ तो आज।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो गर्मी के बगैर कैसा लगता है, मजा आता है गर्मी का?
1: नहीं सर मजा तो नहीं ना आता है।
0: नहीं तो देखिए मजा तो ये देखिए ये तो अगर पहले बहुत पहले की बात करें तो लाइट नहीं हुआ करती तो भी लोग एंजॉय किया करते थे।
1: हाँ सर किया करते थे, लेकिन आज की जनरेशन में सर लाइट नहीं हो तो क्या एंजॉय, क्योंकि फोन वगैरह चार्ज नहीं देंगे तो फिर।
0: हाँ फोन के बिना तो आजकल जीवन अधूरा है,
1: जिंदगी नहीं अभी तो।
0: ये बात भी सही है। चलिए ठीक है, तो आपने गाना भी बता दिया और सारी चीजें बता दी, तो हम अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको गाना सुनवा दें।
1: जी सर थैंक यू।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए सबसे पहले तो।
1: जी मैं इंदौर से बोल रही हूँ।
0: इंदौर से तो बोल रही हैं आप, नाम भी तो होगा आपका कुछ।
1: जी है ना, जीनत परवीन, कोहिनूर कॉलोनी से।
0: जी जीनत परवीन। अच्छा ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनेंगी?
1: गाना प्रेम रोग का।
0: प्रेम रोग का कौन सा? मैं हूँ प्रेम रोगी
1: जी। कुछ नहीं जब रोक ये लग जाता।
0: हाँ, बहुत अच्छा गाना है ये, सुरेश वाडकर की आवाज़ है।
1: जी
0: रेडियो सुनती हैं आप?
1: रेडियो चलता ही रहता है।
0: अच्छा रेडियो चलता रहता, देखिए चलते रहता है तो इस वजह से आप पूरे प्रोग्राम सुनती होंगी। तो आकाशवाणी इंदौर सुनती हैं या आकाशवाणी मध्य प्रदेश सुनती हैं या आकाशवाणी भोपाल सुनती हैं, क्या सुनती हैं आप?
1: सब सब सुनती हूँ, सब पे लगा लेती हूँ।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है।
1: इंदौर भोपाल लखनऊ।
0: नई तकनीक का यही फायदा है कि हम घर बैठकर पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं,
1: जी
0: है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है प्रेम साहब, क्या बात है
1: जी, कैसे हैं सर आप?
0: अरे बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ और आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आपसे बात करता रहूं।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, हमारे भी दिल चाह रहा है कि हम आपसे बात करते रहें।
1: जी
0: तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुझे कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर, फिल्म का नाम है कुली नंबर वन।
0: कुली नंबर
1: और
0: वन,
1: हाँ जी, उसका है ना वो जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, जब दिल न लगे। हाँ, तो अभी आपका दिल नहीं लग रहा?
1: जी, हमारा दिल तो हमेशा लगा रहता है, आकाशवाणी सुनते रहते हैं। और जब सबसे ज्यादा हमें लोकप्रिय कार्यक्रम लगता है आकाशवाणी भोपाल का, कोई मतलब फोन करेगी सुनो।
0: अभी ये आकाशवाणी भोपाल नहीं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी
0: अच्छा, और बताएं बाकी कैसे, क्या हाल चाल है वहाँ आपके उज्जैन में, महाकाल की नगरी है, अभी
1: जी
0: गर्मियों के
1: बिल्कुल,
0: क्या हाल
1: सभी
0: है?
1: अच्छे हैं। अभी गर्मी काफी हो गई है और अभी 2028 में सिंहस्थ लगेगा ना,
0: हाँ,
1: तो उसकी काफी तैयारियां हो चुकी हैं। रास्ते काफी चौड़े कर दिए गए हैं, मंदिर के आसपास में काफी जगह कर दी गई है और
0: हाँ
1: मतलब एरोप्लेन की भी व्यवस्था कर दी गई है। और रेलवे स्टेशन पे भी मतलब है ना ऐसे कैमरे लगा दिए गए हैं वो, ताकि यात्रियों को आने जाने वाले को कोई असुविधा ना हो।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है। तो आपने गाना भी बता दिया मुझे और हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके
1: जी
0: लिए भी।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: सर नमस्ते
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: सर, मोहम्मद सलमान बोल रहा हूँ शहडोल एमपी से। नहीं
0: मोहम्मद सलमान। मुझे एकदम से लगा कि सलमान खान तो नहीं बोल रहे।
1: अरे नहीं सर, और सुना ये कैसे हैं सर आप?
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक। आपने जगह का नाम क्या बताया?
1: सर हम शहडोल से बोल रहे हैं। शहडोल
0: तो शहडोल का नाम ऐसा क्यों पड़ा कि शहडोल?
1: शहडोल का तो सर क्या कहते हैं, तो फिर क्या, बहुत क्या पुराना शहर है सर, और इसका नाम शुरू से यही है सर।
0: अच्छा यही है तो, मतलब अपन का कोई योगदान नहीं है, पहले ही रख दिया इसका नाम।
1: जी।
0: चलो ठीक है। मैंने कहा शायद कुछ इतिहास होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना।
1: हाँ
0: चलिए अच्छा बताइए मुझे कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मेरे को सर गाना सुनवा दीजिए सर। फिल्म का नाम है, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, फिल्म का नाम है सर फिर क्या के कुली,
0: कुली। क्या बात है कुली।
1: और गाने के बोल हैं क्या, मुबारक हो तुमको ये हज का महीना।
0: अरे क्या बात है।
1: तो हज में क्या कहते, अम्मी और अब्बू हमारे गए हैं सर, तो फिर क्या कहते हैं, तो फिर ये गाना सुनना चाहते हैं सर।
0: अरे वाह क्या बात है। और देखिए कि हज पे गए हैं और
1: जी
0: आपको, और आपका फोन भी लग गया है, तो मतलब ये कि जा चुके हैं या जाने वाले हैं?
1: तो फिर क्या कहते, जा चुके हैं सर,
0: अच्छा
1: हज
0: जा
1: में जा
0: चुके।
1: चुके हैं।
0: अच्छा चलिए तो आप सुनिएगा गाना और अपने दोस्तों को भी सुनवाइएगा ये गाना।
1: जी सर,
0: आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी सर, शुक्रिया सर।

0: कार्यक्रम में फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते।
1: बोबी राय कुमार बात कर रहा हूँ सर, कोटा से।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सब बढ़िया सर, यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: क्या बात कर रहे हो
1: सर, राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: राजस्थान? हाँ, वैसे भी क्या है, राजस्थान रेगिस्तान लगा हुआ है वहाँ। हाँ जी, तो गर्मी तो होगी। और अभी टेम्परेचर कितना होगा?
1: सर यहाँ पर 42 है अभी तो, और दिन में और बढ़ जाएगा सर।
0: अच्छा, दिन में और बढ़ जाएगा।
1: हाँ सर,
0: ओहो, तो घर से
1: सही
0: बाहर
1: सही
0: निकलना तो
1: बोला।
0: बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना।
1: हाँ सर, बहुत।
0: तो फिर क्या करते हैं जब ज़्यादा गर्मी होती है? तो घर में रहते हैं।
1: ज्यादा गर्मी होती है तो फिर कूलर चलाते हैं।
0: अच्छा, कूलर चला लेते हैं, चलो ये भी अच्छा है। अच्छा बताओ, कौन सा गाना सुनोगे?
1: मैंने प्यार किया का कहे तो उसे सजना।
0: अच्छा, मैंने प्यार किया है कुछ इसमें, यही गाने क्यों पसंद है?
1: सर पुराने गाने ही पसंद है।
0: अच्छा, तो कहो क्या गाने के बोल क्या हैं?
1: कहे तो उसे सजना।
0: चलिए, आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो, फोन करेगी सुनने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: सर नमस्कार, मैं जितेंद्र पंडोले बात कर रहा हूँ।
0: जितेंद्र पंडोले। जितेंद्र जी
1: जी
0: कहाँ
1: सर,
0: से
1: ग्राम
0: बोल रहे हैं?
1: मल्हान, जिला छिंदवाड़ा से।
0: छिंदवाड़ा से।
1: जी सर,
0: बहुत ही अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं?
1: सर मैं अभी फिलहाल तो PhD कर रहा हूँ,
0: अरे वाह,
1: रिसर्च स्कॉलर हूँ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में, और साथ ही साथ पढ़ा भी रहा हूँ सर UTT डिपार्टमेंट में।
0: अच्छा, मतलब पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा काम है।
1: जी जी जी जी सर,
0: और यही बात होती है कि देखिए, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप कुछ काम शुरू कर देते हैं, जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: लोग
1: जी
0: ऐसे
1: सर,
0: होते हैं कि पढ़ाई के समय कुछ नहीं करते, फिर उनके लिए डबल स्ट्रगल होता है। तो मेरा मानना है कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब से

0: आप अपना कुछ भी काम छोटा मोटा शुरू कर दीजिए, और जब आपकी पढ़ाई
1: जी
0: होगी तब तक आप बहुत आगे निकल जाते हैं। अच्छा,
1: जी
0: ये तो हो
1: जी
0: गई
1: सर,
0: वैसी बात, आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मैं गाना सुनना चाहूंगा, मूवी का नाम तो पता नहीं
0: हाँ,
1: बट गाना है
0: गाना याद नहीं आ
1: ये,
0: रहा।
1: हाँ ये रात भीगी भीगी,
0: अच्छा, ये रात भीगी भीगी।
1: आपकी
0: हाँ,
1: आवाज भी बहुत मधुर लगती है जावेद सर, आपको मैं तो हरदम सुनते रहता हूँ जब
0: क्या
1: जब भी
0: बात है,
1: आपकी
0: क्या बात
1: मूवी
0: है।
1: लगती होगी।
0: हाँ, तो हमें भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और जब हमारे श्रोताओं का फ़ोन आता है ना, हमें ऐसा लगता है
1: जी
0: कि हम इनसे बात करते रहें, लेकिन समय की कुछ पाबंदी होती है कि हम उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाते।
1: जी जी जी
0: चलिए,
1: जी
0: मगर
1: जी जी
0: आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, आप ज़रूर सुनिएगा।
1: जी जी सर, धन्यवाद सर।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: संतोष जी, क्या हाल चाल हैं?
1: बहुत ही अच्छे हाल समाचार सर, आपकी आवाजें सुनते हैं। नमस्कार, भोपाल में इतनी ऊर्जा का संचार आप करवाते हैं, बहुत ही ज्यादा मन प्रसन्न हो जाता है सर।
0: जिस तरह से आपको खुशी होती है ना, उससे ज्यादा हमें खुशी होती है कि हमारे श्रोताओं से हमारी बात हो रही है, क्योंकि हम आपको देख नहीं सकते लेकिन उसके बाद में भी अगर आप हमें सुन रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हम इंजॉय करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कॉल करते हैं।
1: बिल्कुल सर, सुकून भरे पल निकाल लेते हैं हम लोग इस तरीके से, जिस तरीके से आकाशवाणी भोपाल, नमस्कार भोपाल, गीत सागर और फोन इन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को लेकर के आता है, जिसमें हमें ऊर्जा का संचार करवाता है, साथ ही ज्ञान की जो ताकत होती है उसे भी प्रवाहित करवाता है सर। ऐसे कार्यक्रमों को सुनना और गुनना बहुत ही अच्छा लगता है सर।
0: चलिए, अब आप हमें ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: जी सर, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है सर, फिल्म का नाम है पाकीज़ा।
0: पाकीज़ा, चलो दिलदार चलो,
1: नहीं सर, इसका बहुत ही प्यारा सा गाना है सर,
0: कौन सा बताओ?

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। इसराइल और लेबनान के अधिकारियों के बीच वॉशिंगटन में तीसरे दौर की शांतिवार्ता जारी है। अभी तक इसमें किसी महत्वपूर्ण प्रगति की खबर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में समिति का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार सभी वर्गों और संबंधित पक्षों से चुनाव सुझाव प्राप्त करेगी। इसके लिए संभाग और जिला स्तर पर दल भेजे जाएंगे। फर्जी विश्वविद्यालयों और अवैध शिक्षण संस्थानों के जाल से विद्यार्थियों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उज्जैन से भोपाल अपने काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने पहुंचे मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही मामले के निराकरण तक उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार निरस्त कर दिए गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं देवरी भाटरपारा से गनुला रजक, के आर साहू, अश्विनी शर्मा वर्मा, गणेश मिस्त्री। इसी गीत को सुनना चाह है अमित, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवा पारसमणि और संदीप पाटिल। आप सभी ने सुनना चाहा है सड़क फिल्म का ये नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, अमरावती महाराष्ट्र से।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आए दिन बहार की फिल्म का नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। सुनने की ख्वाहिशमंद अमलेश्वर से डोमन, सुमन, मिथलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। धनतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और झाविंद्र कुमार। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं झारखंड से उत्तम कुमार, श्वेता और ताशु। पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। आप सभी ने सुनना चाहा है अभिलाषा फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार के यकुल सुरों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, तर्ज बनाई है आर जी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सभा हो, बढ़िया खेती के लाने सुनो ग्राम सभा हो।
1: ग्राम सभा प्रतिदिन शाम 7:21 पर खेती किसानी की समसामयिक जानकारियाँ, कृषि विशेषज्ञों से सलाह, बुंदेली समाचार, लोकगीत और मौसम की जानकारी सुनते रहिए कार्यक्रम ग्राम सभा।
2: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
3: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र का दूसरा भाग।

0: सुधीजन को मेरा बारंबार प्रणाम। पंचतंत्र की कथाएं सचमुच मोहित करने वाली होती हैं। पिछली कथा में मैंने बताया दमनक ने संजीवक से वचन लिया कि राजा से मित्रता करके वो दमनक को भूल ना जाए, नहीं तो दंतिल ने गौरव को अपमानित करके जो भूल की थी वही हालत संजीवक की होगी। और दमनक ने संजीवक को दंतिल की कथा कुछ यूं सुनाई।
1: वर्धमान नाम का एक नगर था, वहां एक दंतिल नामक आभूषणों का व्यापारी था। वो राजा का विशेष कृपा पात्र था। कहा जाता था उसके समान चतुर व्यक्ति शहर में नहीं था। एक बार की बात है, गौरम नामक व्यक्ति जो राज दरबार में सेवक था वो दंतिल से अपमानित हो गया।
2: समझता क्या है वो दंतिल? महाराज का बड़ा मुंह चढ़ा है ना, सबके सामने मुझे अपमानित करके उसने अच्छा नहीं किया। इस भांडपति दंतिल को राजा की कृपा से वंचित ना करा दूं तो मेरा नाम भी गौरव नहीं। परंतु कैसे, उसकी कुछ भी क्षति करना मेरे बस में नहीं है। क्या करूं, क्या
3: क्या हुआ? इतनी देर रात किस पर इतने क्रोधित हो रहे हो? आज तक तुम्हें ऐसे अपशब्द बोलते मैंने कभी नहीं सुना। देख रही हूँ कल रात से ही परेशान से दिखाई दे रहे हो।
2: नहीं भगवान, जब दिल दुखता है तभी हाय निकलती है। दंतिल आजकल आसमान में उड़ने लगा है।
3: दंतिल? कौन दंतिल? वही व्यवसायी।
2: अरे छोड़ो, बड़ा आया व्यवसायी, अपने आप को महाराज का सगा वाला समझने लगा है।
3: क्यों, क्या हो गया? अरे ऐसा क्या कर दिया उसने?
2: कुछ मत पूछो। मैं उस रात को उस दंतिल की बेटी की विवाह समारोह में गया था ना।
3: हाँ?
2: पूरा राज परिवार भी वहाँ पर उपस्थित था। मैं महाराज के साथ ही था। मुझे वहाँ पर महाराज के पास बैठा देखकर उसने मुझे बहुत अपमानित किया और धक्के देकर विवाह स्थल से निकाल दिया।
3: क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ। परंतु आप शांत रहिए, अपने जीव को दुखाइए मत। शुभ कार्य में किसी निर्धन का श्राप लेकर वो भी सुखी नहीं रहेगा। सुनिए, चलिए सो जाइए, बहुत रात हो गई है।
2: नींद किसे आएगी, मेरे तो सीने में आग जल रही है। जब तक उससे इस अपमान का प्रतिशोध नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या करूं? हाँ, एक ही उपाय है। अपने आप को महाराज के बहुत निकट समझता है ना, क्यों ना उसके विरुद्ध महाराज के कान भर दूं। फिर जो करना है वो महाराज स्वयं ही करेंगे।
4: अरे गौरव
5: जी,
4: आज सूर्य उदय के पूर्व ही तुम्हारा काम शुरू हो गया और मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई।
5: क्या करूं महाराज, एक घटना देखकर रात भर नींद ही नहीं आई
4: है,
5: इस कारण जल्दी ही काम पर आ गया।
4: ऐसी कौन सी घटना देख ली तुमने?
5: कैसे कहूं महाराज, मैं तो साहस ही नहीं जुटा पा रहा हूं।
4: निर्भय होकर कहो।
5: क्षमा चाहता हूं महाराज, उस दंतिल की दृष्टता तो देखिए, उसका साहस। नाना महाराज, मैं ना कह पाऊंगा।
4: देखो, जो बात शुरू की है उसे पूरा करो, मेरा आदेश है।
5: उसका साहस इतना बढ़ गया है कि वो महारानी का आलिंगन करने लगा।
4: क्या बक रहे हो गौरव, होश में तो हो। महारानी का आलिंगन? दंतिल?
5: अपराध क्षमा करे महाराज, जुआ खेलते हुए रात नशे में मुझे नींद नहीं आई। मैंने अभी अभी जो कुछ भी कहा हो सकता है उसी का असर हो।
4: दोष, बिना विचारे इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अभी यहां से निकल जाओ।
5: जो आ गया महाराज मैं चला।
4: कहीं ऐसा तो नहीं ये गौरम सत ही कह रहा हो, दंतिल के साथ साथ ये भी तो अंतापुर में बेरोक टोक जाता था। महारानी की दंतिल के प्रति किंचित आ सकती हो। तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानन्ति कुतः मनुष्य। नहीं, आज के बाद दंतिल का राजभवन में प्रवेश बंद बंद बंद बंद बंद बंद।
6: दंतिल जी, आपका राजभवन में प्रवेश निषेध हो गया है।
7: अरे ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं महाराज का विशेष कृपा पात्र हूँ।
6: परंतु महाराज ने स्वयं ही ये आदेश दिया है।
7: हूँ, मैंने तो सपने में भी राजा अथवा उनके किसी प्रियजन का अनिष्ट नहीं किया, फिर महाराज मुझसे अप्रसन्न क्यों हो गए।
5: अरे भाई द्वारपाल
6: जी
5: सावधान रहना, ये श्रीमान दंतिल जी हैं, राजा के विशेष कृपा पात्र हैं। इन्हें राजा की ओर से पुरस्कार अथवा दंड पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इन्हें रोकने से आप लोग भी मेरी तरह अपमानित हो सकते हैं।
7: लगता है ये सारी चाल गोरंभ की ही है। अरे भाई गोरंभ, भाई गोरंभ, मुझे अपने किए पर पश्चाताप है, आप कृपया उस अपमान को भूलकर मुझे क्षमा कर दें।
5: आपने मुझसे क्षमा मांगकर मेरे मन का कलुष मिटा दिया। आपने सबके सामने क्षमा मांगकर मुझे बहुत सम्मानित किया है। अब आप मेरे बुद्धि कौशल एवं राजा के अनुग्रह को देखिए।
7: आप धन्य हैं, आप धन्य हैं।
5: महाराज की जय हो। आप सर्वज्ञ हैं, परंतु शौच स्नान आदि क्रिया के समय ककड़ी खाना उचित नहीं है महाराज।
4: गौरम, कैसी अनर्गल बात कर रहे हो, क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है?
5: देव, जुआ खेलने में व्यस्त रहने के कारण मैं रात भर जागता रहा हूँ। नींद के नशे में मेरे मुख से कुछ निकल गया हो तो मुझे क्षमा करें महाराज।
4: मैंने जन्म से आज तक कभी ऐसा कार्य नहीं किया। इसने अर्ध निद्रा में जिस प्रकार की ये बात कही, संभवतः दंतिल की कहानी भी झूठी हो। मैंने व्यर्थ ही उसे अपमानित किया। मैं आज ही उसे बुलाकर उचित सम्मान देकर पूर्ववत नियुक्त कर दूंगा।
0: इस कहानी को सुनाकर दमनक ने संजीवक को बता दिया कि जो गर्व के कारण राजभृत्यों का अनादर करता है उसकी हालत दंतिल जैसी होती है। संजीवक से वचन लेकर उसने पिंगलक से संजीवक की मित्रता करवा दी। दोनों की मित्रता इतनी गाढ़ी हो गई कि पिंगलक अब पूरी तरह संजीवक के वश में हो गया। संजीवक और पिंगलक की मित्रता देखकर पूरी जानवरों की सेना दुखी हो गई। अब न राजा उनका ध्यान रखते थे ना ही भोजन की व्यवस्था करते। सारा दिन केवल संजीवक के साथ विचरण करते रहते। भोजन के अभाव में सभी की स्थिति दयनीय हो गई थी।
8: ऐसे कैसे जीवन कटेगा दमनक? सिंहराज तो अपना अरण्य धन तक भूल गए हैं। भूख के कारण सभी की दशा दयनीय हो गई है।
9: हाँ करकट, कहते हैं ना, सूखा पेड़ कितना ही विशाल क्यों ना हो पक्षी दूर चले जाते हैं। उसी प्रकार सेवक कितने दिनों तक बिना जीविका के प्रतीक्षा करते रहेंगे।
8: मुझे तो लगता है हमारा मंत्री पद पुनः पाने का सपना सपना ही रह जाएगा। तुम्हारा क्या विचार है?
9: अरे करकट, राजा की दृष्टि में इस समय हम नगण्य हैं, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम राजा को सारी

0: परिस्थितियों से अवगत करा दें।
1: नाग, ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है।
0: आपका कथन ठीक है, ये सब मेरा ही दोष है। मैं स्वयं ही इसका जिम्मेदार हूँ। जैसे आषाढ़ भूत कलिका और जुलाहे की स्त्री।
1: कैसे?
0: सुनो, किसी निर्जन स्थान में सन्यासियों का एक मठ था। वहां देव शर्मा नाम का एक सन्यासी निवास करता था। मठ में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे से उसके पास ढेर सारा धन एकत्र हो गया।
2: इस धन की पोटली को इधर उधर रखना ठीक नहीं। मैं इसे अपने कक्ष में ही रखता हूं। उफ, ये अच्छा जंजाल मेरे सिर पर आ गया। वैसे भी धन सदैव मनुष्य के लिए कष्टप्रद ही होता है। कौन कौन है वहां? अंदर आओ भाई।
3: प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम आषाढ़ भूति है। भगवान, मेरा नमन स्वीकार करें।
2: आयुष्मान भाव,
3: यह संसार आसार है, मुझे दीक्षा देकर अनुग्रहित करें भगवान।
2: वत्स, तुम युवावस्था में ही जीवन से विरक्त हो गए हो। तुम धन्य हो, मैं दीक्षा रूपी अनुग्रह तो कर ही दूंगा, परंतु रात्रि के समय तुम मठ में प्रवेश नहीं करना। द्वार पर बनी घास की कुटिया में शयन करना।
3: आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है भगवान।
2: वत्स, आषाढ़ भूत, पूजा की तैयारी हो गई?
3: जी गुरुदेव, आप पूजन प्रारंभ करें।
2: ओम,
3: पता नहीं कितने दिन इस बुड्ढे की सेवा करना पड़ेगी। मन में आता है किसी दिन इसकी हत्या कर डालूं और धन लेकर चंपत हो जाऊं।
2: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सव

0: एक दिन पंडित देव शर्मा ने आषाढ़ भूति से कहा कि उनका एक शिष्य उन्हें निमंत्रण देकर गया था कि उसके घर गृह प्रवेश में आना है। वो चाहते हैं कि आषाढ़ भूति भी उनके साथ चले। मार्ग में
1: दिन चढ़ाया। वत्स, मैं स्नानादि से निवृत्त होकर आता हूँ, थक गया हूँ। सामने ही जलाशय है, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, मेरे लौटने तक मेरी इस पोटली की रक्षा करो।
2: जो आज्ञा गुरुदेव।
1: ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः।
2: इसी क्षण की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था गुरुदेव। आप स्नान कीजिए और मैं तो चला ये पोटली लेकर।
1: वत्स, अब तुम जाकर। वत्स, वत्स कहाँ हो? आषाढ़ भूति, आषाढ़, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो भाग नहीं सकता। हाय हाय, मैं लूट गया। अरे आषाढ़ भूति मुझे लूट कर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया रे, कहाँ चला गया?
0: और इस प्रकार विलाप करते हुए देव शर्मा आषाढ़ भूति के पद चिन्हों को ढूंढते हुए सूर्यास्त के समय एक गांव में पहुंच गया। उस गांव में एक जुलाहा अपनी स्त्री के साथ समीप के नगर में जा रहा था। सूर्यास्त काल में द्वार पर आए अतिथि का सत्कार करने वाला देवत्व को प्राप्त करता है। ऐसा सोचकर स्त्री को आतिथ्य के लिए छोड़कर वो जुलाहा स्वयं चला गया। परंतु पति के जाते ही वो सज धज कर अपने प्रेमी देवदत्त से मिलने चल पड़ी। रास्ते में पति को देखकर घर वापस आ गई। परंतु उसके पति को संदेह हो गया।
3: अरे पापिन, तू आभूषणों से लदकर अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी? तेरे बारे में बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं मैं। आज अपनी आंखों से देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। आज मैं तुझे उचित दंड दूंगा। ये ले, ये ले, ये ठीक रहेगा। अब मैं तुझे इस खंबे से बांध दूंगा। अब भाग तू।
4: अरे ये तो सो गया, अब मैं क्या करूं? देवदत्त के पास कैसे जाऊं? ये कलिका तो इधर ही आ रही है। सखी कलिका, कलिका सुनो।
5: अरे सखी, अरे देवदत्त वहां तुम्हारी बाट जो रहा है, तुरंत जाओ।
4: लेकिन मेरी दशा तो देखो, मैं कैसे जा सकती हूँ? सुनो, तुम जाकर उससे कह देना कि आज रात्रि में उससे मेरी भेंट होना संभव नहीं है।
5: नहीं, ये उचित नहीं, तुमने उसे वचन दिया था। अरे वो बाट जो रहा है।
4: अगर ऐसी बात है तुम ही बताओ सखी, कि इस कठिन बंधन में रहकर मैं कैसे वहां जा सकती हूँ? और ये मेरा पापी पति भी तो यहीं पड़ा है।
5: अरे सखी, शराब के नशे में बेहोश ये सूर्योदय के बाद ही जागेगा। ऐसा करो, मुझे अपने स्थान पर बांधकर तुरंत ही देवदत्त से मिलाओ।
4: हाँ हाँ हाँ सखी, यही ठीक रहेगा। तुम जो कहती हो मैं वही करूंगी।
5: रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो गया। सखी को अब तक आज
4: जाना चाहिए था। अरे अरे कहीं ये नींद से जाग न जाए।
3: अरे अरे पापिष्ठा कुलटा, यदि आज से तू पर पुरुष गमन नहीं छोड़ते तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल।
4: कुछ बोलूं तो ये मेरी आवाज पहचान लेगा, मैं चुप ही रहूंगी, मैं चुप ही।
3: अरे बोल, तू बोलती क्यों नहीं? बोल, तू बोलेगी कि नहीं बोलेगी? हाँ नहीं बोलेगी? रुक रुक, अबे रुक, मैं तेरे शस्त्र से तेरे नाक काट दूंगा। अबे ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले।

0: देव शर्मा तो इस पूरी घटना को देख रहा था। धन चोरी होने के कारण उसे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो जुलाहे की पत्नी की उल्टा प्रवृत्ति को देख रहा था। प्रेमी से मिलने के बाद रात के अंतिम प्रहर में जब जुलाहे की पत्नी घर वापस आई तब
1: सखी कलिका, तुम सकुशल तो हो ना? कहीं मेरे जाने के बाद ये पापी उठा तो नहीं था?
2: तुम आ गई, नासिका को छोड़कर बाकी मैं सकुशल हूँ।
1: क्या
2: तुम शीघ्र मुझे इस बंधन से मुक्त करो, जिससे इस पापात्मा के देखने के पूर्व ही मैं अपने घर चली जाऊँ। मेरे पति भी लौटते होंगे, मुझे शीघ्र ही घर पहुँचना होगा।
1: हाँ सखी अवश्य। परंतु सखी, तुम अपने पति से नासिका के घाव के विषय में क्या कहोगी?
2: देखती हूँ कोई ना कोई उपाय तो निकल ही आएगा। अब देर मत करो, आओ आओ, मैं तुम्हें बांधूं।
1: हाँ, लो बांधो।

0: क्यों पर पुरुष गामने अब भी कुछ बोलेगी या नहीं? आए नाक तो मैंने काट दी, क्या कान भी काट कर और कठोर दंड दूं? बोल।
1: अरे मूर्ख पापी, मेरे जैसी सती नारी को कौन अपमानित कर सकता है? बड़े आए मुझ पर संदेह करने वाले, समस्त लोकपाल मेरी बात ध्यान से सुने। यदि मेरे मन में भी सतीत्व है और मैंने कभी स्वप्न में भी पराए मर्द की कामना नहीं की है, तो देवता गण मेरी नासिका को पहले जैसा अक्षत बना दें। और यदि मेरे कहे वचन में तनिक भी मिथ्या हो, तो ईश्वर मुझे जलाकर राख बना दें।
0: अरे जा जा, बड़ी देखी है तेरे जैसी सती, जरा चेहरे से हाथ तो हटा।
1: देख दुष्ट, देख मेरे सतीत्व के प्रभाव से मेरी नाक पूर्ववत ठीक हो गई है।
0: ये कैसे हो सकता है? नीचे खून अभी तक पड़ा हुआ है, मैंने खुद प्रहार किया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? तो क्या मेरी पत्नी सचमुच निर्दोष है? मैंने व्यर्थ ही पाप मोल लिया? गांव वालों की बातों में आकर मैंने सीता जैसी पत्नी पर संदेह करके घोर अन्याय किया है। देवी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो देवी। आओ आओ बैठो, यहाँ बैठो। ईश्वर मुझे पश्चाताप का मौका दे, ईश्वर मुझे पश्चाताप का मौका दे। बैठो बैठो।
1: हाँ अब ठीक है।
2: हे प्रभु, ये स्त्रियां तो असुरों की भांति माया जानती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सन्यासी हूं, संसार के इस माया जाल से दूर। उफ।
3: मुझे तुरंत ही घर पहुंचना होगा। मेरी नासिका से जो खून बह रहा है उसका क्या करूं? अभी से मेरे स्वामी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। सखी को बचाने के चक्कर में मैं ही फंस गई। जो घर आ गया, अब क्या करूं?
4: प्रिये, प्रिये, प्रिये, प्रिये, प्रिये, सुनो, आज बड़ा विलंब हो गया है, सूरज चढ़ाया है। मैं वो मुझे राज दरबार में बाल काटने और दाढ़ी बनाने के लिए शीघ्र पहुंचना है। तुम एक काम करो, मेरे औजारों की पेटी जल्दी दे जाओ तो मैं चला जाऊं जल्दी।
3: ये मौका अच्छा है। मैं धार धार उस तरह उसकी ओर जोर से फेंकती हूँ। अगर वो मेरी ओर उसे वापस फेंक देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ये ले पकड़।
4: अरे अरे, ये कौन सा तरीका है? मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ, इस कारण तेरा साहस अत्यधिक बढ़ गया है। अपने स्वामी के लिए कोई सम्मान नहीं है? ठीक है ठीक है, तुझे उचित दंड देना होगा।
3: नहीं,
4: ले ये उस्तरा।

0: न्यायालय की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
1: श्रीमान, इस नापित ने बिना किसी अपराध के ही अपनी स्त्री का अंग भंग कर दिया है, अतः इसे उचित दंड दें।
0: नापित, तुमने अपनी पत्नी पर प्रहार क्यों किया? क्या इसने परपुरुष गमन किया था या चोरी की थी? इसका अपराध क्या है, बोलो। तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा मौन तुम्हें अपराधी साबित करता है। सिपाहियों का कथन भी ठीक जान पड़ता है। तुम दोषी हो। इस निर्दोष स्त्री पर प्रहार करके तुमने घोर अपराध किया है, अतः तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा।
2: महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।
0: कौन हो तुम जो इस समय अदालत की कार्रवाई में दखल दे रहे हो?
2: मैं सन्यासी हूँ। मेरा नाम देव शर्मा है। ये बेचारा नापित अन्याय पूर्वक मारा जा रहा है। ये निरपराध है। मेरी बात आप ध्यान पूर्वक सुने।
3: और फिर देव शर्मा ने सविस्तार दोनों वृत्तांत को सुनाया। उसकी बात को सुनकर न्यायपाल ने नापित को मुक्त कर दिया और कलिका को दंड स्वरूप कान काटने का आदेश दिया। देव शर्मा ये सब देखकर अपने धन की चोरी को भूलकर पुनः मठ में लौट गया। दमनक की ये कथा सुनकर करकट संतुष्ट हुआ या नहीं, या दमनक को कोई और कथा सुनानी पड़ी, ये जानने के लिए कीजिए अगले सप्ताह का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। इससे पहले हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। प्रदेश में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के चयनित 4,000 प्रतिभागियों को आज से जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार सभी वर्गों और संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करेगी। इसके लिए संभाग और जिला स्तर पर दल भेजे जाएंगे। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश लू के चपेट में है। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा, झाबुआ जिले के लिए तीव्र लू की चेतावनी जारी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी हैं। इसी सुविचार के साथ आज का महिला सभा लेकर मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, परिवार किसी भी सामाजिक ढांचे की रीढ़ की तरह काम करता है। दुनिया के हर देश में परिवार होता है, जिसमें माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और कई रिश्ते जुड़े होते हैं। हर शख्स के लिए परिवार अहम भूमिका निभाता है। परिवार हर किसी के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। परिवार की इसी भूमिका को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। बहनों, परिवार की उपयोगिता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व स्तर पर मनाने का फैसला किया। पहली बार विश्व परिवार दिवस 1994 में मनाया गया। हालांकि इस दिन की नींव 1989 में ही रख दी गई थी। बहनों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जीवन में परिवार के महत्व को बताने के उद्देश्य से 9 दिसंबर 1989 के 44/82 के प्रस्ताव में हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। बाद में साल 1993 में यूएन जनरल असेंबली ने एक संकल्प में परिवार दिवस के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी। इसके बाद हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाने लगा। विश्व परिवार दिवस को मनाने की शुरुआत करने के पीछे की वजह दुनिया भर के लोगों को परिवार से जोड़े रखना और परिवार से जुड़े मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैलाना है। भावनात्मक तौर पर परिवार एक दूसरे का सहारा देने और अकेलेपन को दूर करने का काम करता है। विश्व परिवार दिवस, जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विश्व में सद्भाव और एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 की थीम परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण है। ये विषय परिवारों पर बढ़ती असमानता के प्रभाव, बाल गरीबी को कम करने और स्वस्थ विकास के लिए नीतिगत निवेश पर केंद्रित है। बहनों, खुशहाल और स्वस्थ पारिवारिक माहौल बनाने के 4 सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं। साथ में भोजन करना, सक्रिय रहना, चर्चा करना और पति पत्नी के रूप में गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। बहनों, परिवार सर्वोपरि है। स्वस्थ परिवार स्वस्थ समुदायों की नींव होते हैं। दिन हो या रात, चाहे धूप हो या बरसात, चाहे आए विपत्ति हजार, परिवार ही साथ देता है हर बार। हाथों की उंगलियों सा तकरार, मिल जाए तो ताकत अपार, खुशियों से भर जाता दिन हर बार, साथ मिल जाए जब पूरा परिवार। जी हाँ बहनों, तो अपने परिवार पर गर्व करें, समय दें और उसे व्यवस्थित रखें और एक दूसरे को एक दूसरे के प्यार का, सम्मान का और अहमियत का एहसास कराते रहें, कुछ इस तरह से। बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: मैंने अभी हम सुन रहे थे सुरेश वाडकर, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज में फिल्म हम से ये सुरीला सा गीत। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। मैनो हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे सपने, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया जब कलम के सहारे कागज पर उतर आते हैं तो वो कविता का रूप ले लेते हैं। कविताएं समाज का और हमारी आत्मा का दर्पण होती हैं। जब कोई कवि या कवियत्री कविताएं लिखता है तो उन कविताओं में समाज में घटित हो रही कई सारी घटनाएं, प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी परिकल्पनाएं और उसके सपने उस कविता को निखार देते हैं। और जब ये कविताएं हम आपको सुनवाते हैं तो वो काव्य पाठ का रूप ले लेती हैं। तो चलिए सुनते हैं नम्रता शुक्ला जी से उनके मनोभाव उनकी कविता के रूप में। क्रम है काव्य पाठ।
1: मैं नम्रता शुक्ला आप सबके सामने एक समसामायिक काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ। और काव्य पाठ की शुरुआत माँ सरस्वती को एक छंद समर्पित करके करूँगी। सुनिएगा। देवी शारदा प्रणाम, चरणों में बारंबार शीश सादर सामने मैं आपके झुकाती हूँ। श्वेत पुष्प श्वेत वर्ण, श्वेत स्वर्ण स्वर्णमयी शब्द कोश स्वरों से सजाती हूँ। साधना विहीन नहीं आत्मा मलिन नहीं, साधना विहीन नहीं आत्मा मलिन नहीं, तन मन धन ध्यान आप में लगाती हूँ। छंद सुर सवार दो व्याकरण सुधार दो, छंद सुर सवार दो व्याकरण सुधार दो, सादगी से नम्रता की लालसा सुनाती हूँ, सादगी से नम्रता की लालसा सुनाती हूँ। अब मैं आपको उस समसामायिक गीत से जोड़ती हूँ जिसके लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। महाराज छत्रसाल की भूमि छतरपुर में उपस्थित हूँ और अपनी उपस्थिति महाराज छत्रसाल को एक गीत समर्पित करके करना चाहती हूँ। सुनिएगा। जिन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, जिन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, वे छत्रसाल इस धरा पे सौर में लड़े, वे छत्रसाल इस धरा पे सौर में लड़े, वे छत्रसाल इस धरा पे सौर में लड़े। श्री किशोर जी की मुरलिया में जो जड़े, उनकी मुरली में जो हीरे जड़े हुए हैं उनसे जोड़कर ये पंक्तियाँ। श्री किशोर जी की मुरलिया में जो जड़े, वो अस्पाद चापों तले हीरे भू घड़े, वो अस्पाद चापों तले हीरे भू घड़े। कृपालु प्राण नाथ छत्र छाया के घने, कृपालु प्राण नाथ छत्र छाया के घने, कौशल महान सूर वीर संगठक बने, कौशल महान सूर वीर संगठक बने। स्वाभिमानी राजा बुंदेल जू बड़े, स्वाभिमानी राजा बुंदेल जू बड़े, वसुंधरा पे छत्रसाल सौर मैं लड़े, वसुंधरा पे छत्रसाल सौर मैं लड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े। आगे सुनिएगा माता पिता के लिए। चंपत पिता को छत्रपति लाल मिला था, चंपत पिता को

0: छत्रपति लाल मिला था, लाड़ कुंवर मात को गोपाल मिला था, लाड़ कुंवर मात को गोपाल मिला था। सुत सेनापति छत्रपति वीर जन में थे, सुत सेनापति छत्रपति वीर जन में थे। मुगल बिगुल काल को अकाल मिला था, मुगल बिगुल काल को अकाल मिला था। लिधौरा जन्म भूमि है गाथा ध्वज गड़े, लिधौरा जन्म भूमि पे गाथा ध्वज गड़े। वसुंधरा पे छत्रशाल शौर्य मय लड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, आज हम खड़े। मध्य खंड वीर सुत प्रतापी राजे थे, मध्य खंड वीर सुत प्रतापी राजे थे। औरंगजेओ मुगलिया एक ख्वाजे थे, औरंगजेओ मुगलिया एक ख्वाजे थे। बुंदेल खंड खंड के प्रचंड तीर से, बुंदेल खंड खंड के प्रचंड तीर से। छत्रपति जय विजय के गाजे बाजे थे, छत्रपति जय विजय के गाजे बाजे थे। मुगलियों के दाव पैंच उल्टे मुँह पड़े, मुगलियों के दाव पैंच उल्टे मुँह पड़े। वसुंधरा पे छत्रशाल शौर्य मय लड़े, वसुंधरा पे छत्रशाल शौर्य मय लड़े। उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े। दहाड़े छत्रशाल रंग बाज उड़ गए, दहाड़े छत्रशाल रंग बाज उड़ गए। प्रचंड युद्ध ठान शत्रु दल उखड़ गए, प्रचंड युद्ध ठान शत्रु दल उखड़ गए। सौर सौर मोर से मुगल मुंड धड़ गए, सौर सौर मोर से मुगल मुंड धड़ गए। मुँह मोड़ रन छोड़ मुगल दिल्ली मुड़ गए, मुँह मोड़ रन छोड़ मुगल दिल्ली मुड़ गए। सत सत प्रणाम कोटि कोटि नमन से मड़े, सत सत प्रणाम कोटि कोटि नमन से मड़े। वसुंधरा पे छत्रशाल सौर मय लड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े। धन्यवाद। झूठ फरमाते मिले। धन्यवाद।
1: बहनों अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ नम्रता शुक्ला से। बहनों हर लड़की के दो परिवार दो घर होते हैं, एक मायका जहां माँ का प्यार पिता का दुलार होता है, और एक ससुराल जहां सास ससुर का लाड़ होता है। इन दो परिवारों के बीच पूरे जीवन भर संतुलन बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है हर महिला के लिए। मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाना भी एक कला है जिसमें समझदारी धैर्य और सम्मान की जरूरत होती है। आप इन तरीकों से एक खुशहाल संतुलन बना सकती हैं। ससुराल की मूल्य और जीवन शैली मायके से अलग हो सकती है, उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं और अपेक्षाएं कम रखें। सास ससुर का आदर करें और घर के कामों में मदद करने की पेशकश करें। अगर ससुराल वाले बात करें तो ध्यान से सुने और अपनी धारणाओं को बीच में ना लाएं। त्योहारों और छुट्टियों में बारी बारी से दोनों परिवारों के साथ यानी ससुराल और मायके में समय बिताएं और दोनों ही परिवारों को अपना समझें और प्यार दें। घर के भीतर आप अपना एक निजी स्थान बनाएं और ससुराल वालों के निजी मामलों में दखल को सम्मानपूर्वक स्वीकार करें। पति को सेतु बनाएं, पति को एक समझदार साथी के रूप में रखें जो दोनों घरों का सम्मान करे। जब संभव हो ससुराल में सीधे बात करें, अपना पक्ष रखें, ना कि पति के माध्यम से। मायके और ससुराल की तुलना करने से बचें। अपने घर की बातों या कमियों की चर्चा मायके में ना करें। मायके या ससुराल से कोई भी मांग या बात आए तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें, पति के साथ मिलकर विचार करें। अगर आप तनावग्रस्त महसूस कर रही हैं तो अपने पति या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करें। बहनों सीमाएं तय करें, ये समझें कि आप सभी को खुश नहीं रख सकती और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहें। ससुराल में सम्मान, काम में सहयोग और बातचीत को महत्व देकर आप मायके और ससुराल के बीच एक स्वस्थ और खुशहाल संतुलन बना सकती हैं। जिस तरीके से मायका आपका अपना घर है उसी तरीके से ससुराल भी जीवन का एक अभ

भिन्न हिस्सा है जहां आपका पूरा जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो सकता है यदि आप मायके और ससुराल के बीच तुलना ना करें। एक महिला एक बांध की तरह होती है जो अपने अंदर भावनाओं के गुबार को बांध लेती है और ये भावनाएं यदि ससुराल से जुड़ जाएं तो आपका जीवन स्वर्ग बन सकता है और आप ससुराल को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकती हैं, कुछ इस तरह से।

नैनो, अभी हम सुन रहे थे फिल्म दिल्ली 6 से रेखा भारद्वाज, श्रद्धा पंडित और सुजाता मजूमदार की आवाज़ में ये सुरीला सा गीत। प्रसून जोशी के गीत को संगीत दिया था AR रहमान और रजत ढोलकिया ने। नैनो, गर्मियों का मौसम आते ही हमारी त्वचा और हमारे शरीर को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों में त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखने के लिए अगर आप धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन जो SPF 30 या 50 है उसका प्रयोग ज़रूर करें। जेल बेस्ड क्लींजर से दिन में 2 बार सफाई करें और हल्का मॉइस्चराइज़र लगाना सबसे ज़रूरी है। बहनों, खूब सारा पानी पिएं, खीरा दही खाएं और धूप में निकलने से पहले अपने चेहरे को ज़रूर ढकें ताकि टैनिंग और घमौरियों से और मुहासों से बचा जा सके। बहनों, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, खूब पानी पिएं, जूस पिएं और नारियल पानी पिएं। साथ ही सुबह की सैर ज़रूर शामिल करें और योगा करें, जिससे आपकी जो त्वचा है उसमें खिंचाव रहेगा। और यदि आप फेस योगा करती हैं तो आपके फेस पर एक अलग ही ग्लो देखने को मिलेगा। हफ्ते में 1 या 2 बार हल्के स्क्रब से डेड स्किन हटाएं, जिससे रोम छिद्र बंद नहीं होते। सूती और ढीले कपड़े पहने, खीरा और गुलाब जल का इस्तेमाल करें जिससे आपकी त्वचा को ठंडक मिले। गर्मियों में हल्का मेकअप करें या बिना मेकअप के रहें ताकि त्वचा सांस ले सके। दही और बेसन का पैक बनाकर लगाने से टैनिंग कम होती है। साथ ही एलोवेरा जेल लगाएं और धूप से झुलसी त्वचा को ठीक करें। मैंने रात को अपने चेहरे को

ज़रूर पानी से धोएं और मॉइस्चराइज़र लगाकर सोएं। गर्मियों का मौसम अपने तेज़ धूप, पसीने और धूल मिट्टी के साथ आता है, जो आपकी त्वचा की चमक छीन सकता है। अपने स्किन को समर रेडी बनाने का मतलब है उसे हाइड्रेट रखना और सूरज की हानिकारक किरणों से बचाना। गर्मियों में अपनी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे अंदर से आपकी स्किन रिकवर होगी, जिसमें आप अपनी डाइट में खीरा, तरबूज, हरी पत्तेदार सब्जियां, खरबूज और कई तरीके के जूस का उपयोग कर सकती हैं, जिसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को प्राकृतिक चमक देंगे। और चेहरे पर बार बार हाथ लगाने से आपको बचना चाहिए और हमेशा ठंडे पानी से चेहरा धोते रहना चाहिए, जिससे आपके त्वचा के जो छिद्र हैं वो बंद ना हो पाएं। अगर आपकी त्वचा पर एक्ने हैं या मुहासे हैं, तो उसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी, चंदन, गुलाब जल और तुलसी वाला स्क्रब और ड्राई और सामान्य त्वचा के लिए नींबू, चंदन और बेसन, हल्दी और शहद भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्मी के सीज़न में सूरज की किरणें 12 से 4 बजे के बीच बहुत सख्त होती हैं। इस समय आप बाहर निकलने से बचें। यदि आप बाहर निकलते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी आँखें धूप के चश्मे से कवर हों और आपके ओंठ बाम के साथ सुरक्षित हों। हम अक्सर भूल जाते हैं कि आँखों के चारों ओर की त्वचा बहुत नाजुक होती है और जिन पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर बहुत अधिक गर्मी आपकी आँखों को लग रही है तो उन्हें स्वच्छ और ठंडे पानी से धो लें। आलू के रस में रुई को भिगोकर आँखों पर लगाएं। यदि समस्या बनी रहती है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। स्वच्छता गर्मी से निपटने में काफ़ी मदद करती है। दिन में 2 बार स्नान करने से न केवल आपकी त्वचा ताज़ा रहती है, बल्कि गर्मियों में सुस्ती का मुकाबला करने में भी मददगार है। तो ये तो थी संक्षिप्त सी जानकारी। और अब बहनों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूँ। तो बस चलते चलते आपके साथ दो लाइनें, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी बहन मंजू व्यास को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आप

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये बधावा।

छक्कीलाल प्रजापति व साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुशाग्र सक्सेना की गाई गजलें।

0: कुशाग्र सक्सेना की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुन

0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
6: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
5: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
6: आकाशवाणी है ना,
8: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
6: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
5: शाम सुहानी हो,
9: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
6: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
5: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
6: सफर में
5: आपके साथ
6: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनिए। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए मजरूह का लिखा और राजेश रोशन का संगीत से सजाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है, इसलिए यह बैठक अहम मानी जा रही है। यूएई के एक वरिष्ठ मंत्री ने प्रधानमंत्री को अपने देश में बेहद सम्मानित नेता बताया।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। श्री मंत्री ने कहा कि NTA में बड़े सुधार जरूरी है ताकि भविष्य में धांधली ना हो। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया के साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रह सके।
2: नीट UG का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया, 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। समाज को अपील करना चाहता हूँ, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूँ, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और असरदार वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए सभी साझेदारों के साथ काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बदलाव की सख्त जरूरत है। उनका कहना था कि नई व्यवस्था में विकासशील देशों और उभरते बाजारों की बात सुनी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य उज्जैन को

0: लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए समिति का गठन हो चुका है और उसकी पहली बैठक भी संपन्न हो गई है। श्री यादव ने बताया कि सरकार सभी वर्गों और समाजों से सुझाव लेकर आगे की राह तय करेगी। प्रदेश में आज से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 की शुरुआत हो गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल के समन्वय भवन में इसका शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 4000 युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने चोइथराम एमवाई और अमलतास अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने के निर्देश दिए। कल सुबह हुए इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई थी। आईपीएल में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिनों तक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। आगर मालवा में श्रम विभाग द्वारा कल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम योगी मानधन योजना के पंजीयन किए गए। झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति की बैठक हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ।

0: कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में

0: 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने

0: यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म साजन से। आवाज़ अनुराधा पौडवाल की है, गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म साजन का ये गीत।

बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म फूल और कांटे का अलका याग्निक और कुमार सानू का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में फिल्म रोज़ा का गीत। बोल पी के मिश्रा के हैं और संगीत है एआर रहमान का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने।

पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप राजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनना चाहते हैं फिल्म मन का उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में गाया हुआ गीत। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने। लीजिए सुनिए।

ग्राम फ्रांसीसी से राजकुमार डुड्डी, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार, हांसी शहर से राजू बबीता, सुभाष योगी बब्बू डब्बू, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म कसूर का ये गीत। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं, बोल समीर के हैं और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग पर, व्यापार पर चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और असरदार वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए सभी साझेदारों के साथ काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बदलाव की सख्त जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए समिति का गठन हो चुका है, उसकी पहली बैठक भी सम्पन्न हो गई है। प्रदेश में आज से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 की शुरुआत हो गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल के समन्वय भवन में इसका शुभारंभ किया। प्रदेश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिन तक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:00। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा सुनिएगा शाम 7:21 पर। आज इसमें आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीत और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में कार्यक्रम खेल जगत के अंतर्गत। रात 9:30 पर आप सुनेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इस विषय पर वार्ता, वार्ताकार होंगे देवेंद्र खुराना। रात 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुनेंगे रात 10:30 पर। इसके अंतर्गत सुनिएगा पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का राग जयंत मल्हार में सितार वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे अपने विविध कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले,
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम सिंपल।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप कभी? खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही दिन में बच्चे का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: खेत है, हमारा खेत में जाना पड़ता।
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर

0: ना सुनना। तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं।
1: हम आपके कौन मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने
1: हाँ
0: चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये
1: हाँ
0: गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद छाटुई से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउसवाइफ हैं, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में। आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर
1: हाँ।

0: घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हाँ, हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर
1: मशीन
0: हैं,
1: से।
0: है ना?
1: हाँ, हम अकेले ही सब सिमेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी, कि
1: हाँ कहिए।
0: खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये 1 घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
1: हाँ करते हैं, 1 घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं
0: और उसमें आपको
1: और
0: खुशी
1: जब
0: मिलती है?
1: खुशी मिलते हैं। हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना, तो परिवार भी
1: हाँ
0: खुश रहता है, और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ
1: हाँ
0: जीवन
1: हाँ
0: जीते हैं।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: बस खुश रहिए,
1: हाँ
0: मुस्कुराते रहिए, और विविध भारती सुनते रहिए। और
1: हाँ
0: आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी।
0: जी, और आपने
1: 2 महीना
0: पसंद का,
1: से छटपटा रहे थे। हाँ जी, कम 2 महीना पूरा होगा।
0: अच्छा चलो, बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम जसमती
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: मैया तेरे बोले नंद लाला।
0: सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए
1: हाँ,
0: अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, ताज तालाब है, महाबलेश्वर है जी।
0: जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है, नटराज
0: जी।
1: मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी, हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज
1: हाँ,
0: कि फोन लग गया है।
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ, चार
0: क्या
1: महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत
1: मैं
0: अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और
1: जी,
0: आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: मेरा 57 एज है दीदी, 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ,
0: क्या बात है।
1: साड़ी सेंटर में। हाँ, सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और
1: आप
0: स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?

0: और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल पे है, मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
1: जी।
0: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
1: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं
0: हाँ,
1: प्यारे प्यारे गीत सुन के।
0: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है मेरा, छोटा ही है,
1: क्या बात
0: उससे
1: है,
0: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
1: ये बात है। नहीं तो देखिए, लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे
0: नहीं
1: सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना।
0: जरूरी है, बराबर है। दीदी
1: जी बताइए, कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती हैं?
0: बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूपों की रानी।
1: बहुत प्यारा गीत आपने चुना है, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
0: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का।

तो ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह हैं 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288 2867-0288 और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थी। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की दहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूलकाय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गई, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है, सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं,

नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूँ जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर मैडम। आज प्राचार्य भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन

प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपये भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। UPI पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की नरद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना? फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने

आज खुशी खुशी चौका संभाला। एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने एक साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुर मुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है। मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे। वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर। सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत न्यूज हेडलाइंस में इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अबू धाबी से रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि मैंने महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा के परिणाम हमारी दोस्ती को और मजबूत करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जब दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ीं तब भारत अलग खड़ा रहा। श्री रिजिजू ने कहा कि कई देशों में पेट्रोल डीजल 20 से लेकर करीब 100% तक महंगा हुआ है, लेकिन भारत ने पेट्रोल में सिर्फ 3.2% और डीजल में 3.4% की बढ़ोतरी की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज धार जिले की भोशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी के बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष सरकार से मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकता है। कोर्ट ने परिसर के प्रशासन और प्रबंधन का जिम्मा ASI और केंद्र सरकार को दिया है। भारत का माल और सेवा का कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। वाणिज्य विभाग ने कहा है कि निर्यात में मजबूत प्रदर्शन, व्यापारिक गति की स्थिरता, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। हमारा आज का यह कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

अयम् निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम्। अर्थात ये मेरा है ये उसका है, ऐसी सोच छोटे मन वाले लोगों की होती है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी धरती ही एक परिवार के समान होती है। साथियों, इसी विचार के साथ स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका मित्र पीयूष चतुर्वेदी। तो साथियों, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, परिवार हमारी पहली पाठशाला है जहाँ प्रेम, त्याग और संस्कार सीखने को मिलते हैं। परिवार ही समाज के साथ हमें जोड़ता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, बुरे से बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। इंसान को जीवन के हर मोड़ पर परिवार की जरूरत होती है। इसीलिए साथियों, हमारे आज के कार्यक्रम की पहली चर्चा परिवार से जुड़ी हुई है, जिसका विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी विश्व परिवार दिवस। साथियों, प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परिवारों की सामाजिक संरचना और मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, परिवारों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर विमर्श को प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 1993 में एक प्रस्ताव पारित कर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था। पहली बार ये दिवस सन 1994 में मनाया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष भी था। विश्व परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष एक थीम के अंतर्गत मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए विश्व परिवार दिवस की थीम है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड।

0: अंडरवेलमिंग। साथियों, सिर्फ एक दिन किसी दिवस को मनाने से उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। हम देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि आधुनिकता की इस दौड़ में हम भूलते जा रहे हैं कि जीवन का असली सुख कहाँ है। मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन ने परिवार का आपसी संवाद छीन लिया है। साथ बैठकर खाना खाने और ठहाका लगाने की जगह सोशल मीडिया के स्टेटस ने ले ली है। मगर तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ही ना हो जाए, रिश्तों की गर्माहट और अपनेपन का कोई विकल्प नहीं है। परिवार वो दीपक है जो तूफानों में भी रोशनी देता है, बशर्ते हम उसे लगातार तेल और बाती देते रहें। तो चलिए साथियों, आज से ही अपने परिवार को प्राथमिकता दें और इस दुनिया को सच्चे अर्थों में परिवार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा जिसका विषय था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और अब आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये मनमोहक गीत।
1: इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

0: सुन रहे थे गीत वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म से, जिसमें आवाज थी जावेद बशीर की, गीतकार थे रजत अरोरा और संगीत दिया था प्रीतम ने। तो साथियों, कार्यक्रम में आगे चलते हुए अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है लेकिन समझने में बिल्कुल आसान है। ये विषय है पेट्रोकेमिकल उत्पाद। पेट्रोकेमिकल दो शब्दों से मिलकर के बना है, पेट्रो यानी पत्थर का तेल या क्रूड ऑयल और केमिकल मतलब रासायनिक पदार्थ। सीधी सी बात है कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग से जो भी रासायनिक चीज बनाई जाती है वो सब पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं। जैसे बढ़ई लकड़ी से कुर्सी मेज बनाता है, वैसे ही वैज्ञानिक तेल के अणुओं को तोड़ मरोड़ कर हमारे काम की हजारों चीजें बना लेते हैं। इसे यूं समझिए, रिफाइनरी में जब कच्चे तेल को बहुत गर्म किया जाता है तो उसके बड़े बड़े अणु टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रैकिंग कहते हैं। इन्हीं को जोड़कर हमें प्लास्टिक की बोतलें मिलती हैं, तो कभी पॉलिएस्टर की कमीज, कभी मजबूत टायर और कभी खुशबूदार साबुन। अब जरा गौर कीजिए, सुबह से रात तक हम कितनी पेट्रोकेमिकल चीजों को छूते हैं। टूथब्रश, पानी की बाल्टी, फ्रिज में रखा डिब्बा, स्कूल बैग, पेन, खिलौने और मोबाइल फोन का कवर, ये सब पेट्रोकेमिकल्स का ही कमाल है। साथियों, केवल प्लास्टिक ही नहीं, खेतों में डाले जाने वाली यूरिया खाद, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर, दवाइयाँ, यहाँ तक कि कुछ विटामिन तक इस परिवार के सदस्य हैं। सच पूछिए तो आज की जिंदगी में ऐसा शायद ही कोई पल हो जब हम पेट्रोकेमिकल उत्पादों से दूर हों। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जितनी आसानी से ये हमें मिल जाते हैं उतनी ही मुश्किल से ये गलते हैं। पानी की एक बोतल को जमीन में पूरी तरह से खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। यही वजह है कि आज हमारे गाँव, शहर, नदियाँ और समंदर प्लास्टिक के कचरे से भरते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम तीन आदतें पक्की कर लें, कम इस्तेमाल करें, दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकल जरूर करें। थैला लेकर के बाजार जाएं, प्लास्टिक की बोतलों की जगह धातु की बोतलों को चुनें और कचरे को गीला सूखा अलग करके ही फेंकें। ये छोटे बदलाव हमारी धरती को बड़ी राहत देंगे। तो साथियों, ये तो हमने आपसे की एक छोटी सी चर्चा पेट्रोकेमिकल विषय पर। और साथियों, अब आपको सुनवा देते हैं वार्ता जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, जिसमें वार्ताकार होंगी प्रियांशी अवस्थी।
1: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। यह विषय है जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण पर उसका प्रभाव। यह विषय हमारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। हम जहाँ रहते हैं, जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन खाते हैं, उन सभी पर बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम ध्यान से अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि आज शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है, सड़कें छोटी पड़ती जा रही हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यह सब कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। जनसंख्या किसी भी देश की शक्ति मानी जाती है। अधिक जनसंख्या का अर्थ अधिक मानव संसाधन भी होता है। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हो तो वह देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेकिन जब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ जाएं, तब वही जनसंख्या समस्या बन जाती है। आज भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। हर वर्ष करोड़ों लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण भूमि, जल, वन, ऊर्जा और रोजगार जैसे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। पहले के समय में लोगों की आवश्यकताएं सीमित थीं। गाँव में प्राकृतिक जीवन अधिक था, पेड़ पौधे, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों की जरूरतें भी बढ़ती गईं। अधिक घरों की आवश्यकता हुई, अधिक भोजन की आवश्यकता हुई और अधिक वाहनों और उद्योगों की जरूरत हुई। इन सब का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा। सबसे पहले यदि हम वनों की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जंगलों की कटाई बहुत तेजी से हुई है। लोगों को रहने के लिए भूमि चाहिए, उद्योगों के लिए जमीन चाहिए, सड़कें और भवन बनाने के लिए स्थान चाहिए। इसके लिए जंगलों को काटा जा रहा है। पेड़ों केवल लकड़ी ही नहीं देते बल्कि वे हमारे जीवन का आधार हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं वर्षा लाने में

सहायता करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन जब जंगल कम होते हैं तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, कई जीव जंतु विलुप्त होने लगते हैं और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ जाती है। आज हम सभी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे शब्द सुनते हैं। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। इन समस्याओं के पीछे बढ़ती जनसंख्या और उससे होने वाला प्रदूषण एक बड़ा कारण है। जब अधिक वाहन सड़कों पर चलेंगे, अधिक फैक्ट्रियां लगेंगी, अधिक बिजली की खपत होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में पड़ेंगी। यही गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। वायु प्रदूषण आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। बड़े शहरों में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। धूल, धुआं और जहरीली गैसें वातावरण में फैल रही हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों का पड़ता है। दमा, फेफड़ों की बीमारी, एलर्जी और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा चाहता है और परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। जल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या बढ़ने के साथ पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। नदियों, तालाबों और झीलों का पानी प्रदूषित हो रहा है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, प्लास्टिक, कचरा और घरेलू गंदगी जल स्रोतों में मिल रही है। आज कई शहरों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। भविष्य में पानी को लेकर संघर्ष होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। यदि समय रहते हमने जल संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पानी मिलना कठिन हो जाएगा। भूमि प्रदूषण भी बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। अधिक उत्पादन के लिए खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक और कचरे के ढेर शहरों और गांवों में दिखाई देते हैं। इससे भूमि की उर्वरता कम होती जा रही है, कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है और भोजन की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव केवल पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती है और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। जब संसाधन सीमित हों और जनसंख्या अधिक हो, तब समस्याएं स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं। शहरों में झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार भी इसी का परिणाम है। लाखों लोग रोजगार की तलाश में गाँव से शहरों की ओर आते हैं, जिससे शहरों में अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। यदि हम अपने दैनिक जीवन को देखें तो पाएंगे कि प्लास्टिक का उपयोग बहुत बढ़ गया है। हर छोटी चीज प्लास्टिक में पैक होकर आती है। यह प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। नदियों और समुद्रों में प्लास्टिक पहुंचकर जल जीवों को भी हानि पहुंचाता है। यह समस्या भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती उपभोग प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। आज तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है, नई नई मशीनें, उद्योग और सुविधाएं विकसित हो रही हैं। लेकिन यदि विकास पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ कर किया जाए तो वह लंबे समय तक लाभकारी नहीं हो सकता। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले। इसे ही सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन सुरक्षित रहें। सरकार भी समय समय पर परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाती है, लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें यह भी समझना होगा कि पर्यावरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, पानी बचाए, बिजली की बचत करे और प्लास्टिक का कम उपयोग करे तो बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। छोटी छोटी आदतें भी बड़े परिणाम ला सकती हैं, जैसे आवश्यकता न होने पर बिजली बंद करना, वर्षा जल संचयन करना, सार्वजनिक परिवहन

0: उपयोग करना और कचरे को इधर उधर ना फेंकना। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता का स्थान दिया गया है, नदियों को देवी माना गया, पेड़ों की पूजा की गई और पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखा गया। इसका उद्देश्य यही था कि मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यदि जंगल केवल किताबों में दिखाई दे, यदि मौसम पूरी तरह असंतुलित हो जाए तो मानव जीवन कितना कठिन हो जाएगा। इसलिए अभी से जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसे नियंत्रित और संतुलित अवश्य किया जा सकता है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, जिसमें वार्ताकार थी प्रियांशी अवस्थी। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि अल नीनो आ रहा है तो इस बार सूखा पड़ेगा, या इस बार ला नीना है तो झमाझम बारिश होगी। मगर क्या आपको पता है कि अल नीनो और ला नीना आखिर होता क्या है? तो चलिए साथियों, आज की इस चर्चा में हम यही जानेंगे कि आखिर अल नीनो और ला नीना होता क्या है। साथियों, अल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान और हवा के पैटर्न में होने वाले दो विपरीत बदलाव हैं, जो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये अल नीनो सदन ऑसिलेशन चक्र का हिस्सा है। अल नीनो होने का कारण मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतही पानी का सामान्य से अधिक गर्म होना है, जिसके प्रभाव से ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे गर्म पानी दक्षिण अमेरिका की ओर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति बनती है, जबकि दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति बनती है। साथियों, अल नीनो को अक्सर गर्म अवस्था या स्पेनिश में क्राइस्ट चाइल्ड कहा जाता है। वहीं साथियों, ला नीना होने का कारण मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतही पानी का सामान्य से अधिक ठंडा होना है, जिसके प्रभाव से व्यापारिक हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं, जो गर्म पानी को पश्चिम यानी कि एशिया की ओर धकेलती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में भारी मानसून वर्षा होती है, वहीं पेरू और इक्वाडोर में सामान्य से कम वर्षा होती है, जिससे सूखे की स्थिति बन जाती है। ला नीना को ठंडी अवस्था एंटी अल नीनो या स्पेनिश में अल वीजो द ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, अल नीनो की घटना आमतौर पर एक साल से अधिक समय तक नहीं रहती है, जबकि इसके विपरीत ला नीना की घटना एक साल से तीन साल तक बनी रह सकती है। इस तरह से साथियों, अल नीनो में समुद्री पानी गर्म होता है और भारत में सूखे का कारण बनता है, जबकि ला नीना में पानी ठंडा होता है, जिससे भारत में अच्छी बारिश होती है। तो साथियों, ये तो हमने आपसे बात की अल नीनो और ला नीना विषय पर, और अब आपको एक बार फिर से ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे आशिकी 2 फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की। गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे जीत गांगुली। तो साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको दे देते हैं हमारी आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। MPESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है हॉस्पिटल असिस्टेंट। पदों की संख्या है 1200। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपने मित्र पीयूष चतुर्वेदी को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। हमारा आज का यह कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था।
1: मीडियम वे पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को, गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद, फिल्म का नाम दिल।

नदीम श्रवण की बनाई धुन पर समीर का लिखा गीत आइए सुनते हैं। आवाज़ अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम साजन।

आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है कर्ज फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और साथियों के स्वर में आनंद बख्शी की शब्द रचना। हीरो फिल्म के इस मधुर गीत को सुरों में पुरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। शाम 6 बजे सुनिए

का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लोक संगीत शाम 6:30 पर कलाकार होंगे मनमोहन शर्मा। सुगम संगीत में आज शाम 6:45 पर आप सुनेंगे तापसी नागराज को। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 7:21 पर आकर्षण होगा फल बागों के लिए भूमि की तैयारी विषय पर डॉक्टर पी के जैन से ली गई भेंट वार्ता।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित सुर्खियों में कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 पर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विगत 12 मई को शहीद स्मारक सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सुर संध्या सभा के संपादित अंश प्रसारित किए जाएंगे आज रात 9:30 पर। संपादक नीला वाजपेयी। समय याद रखें रात्रि 9:30। शास्त्रीय संगीत में आज रात 10 बजे आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग जोग। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम बनमावन रात्रि 10:30 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, ये तो थे हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। वंदना कार्यक्रम में भक्ति रचनाएं आप सुनेंगे कल सुबह 6:05 पर। 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। कृषि समय की सुनिएगा कल सुबह 6:45 पर। 7:20 पर आप सुनते हैं गुड मॉर्निंग जबलपुर। लोक रसधार कार्यक्रम में कल सुबह 9 बजे आप सुनेंगे राजाराम विश्वकर्मा और रघुवर दास अहिरवार के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम संबंधी जानकारी सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। आकाशवाणी भोपाल से अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस में इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अबू धाबी से रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश में 75 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ की खरीदी रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। बम्पर पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीदी लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस सीजन में रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में आज 2 और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही यहाँ खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 हो गई है। ये दोनों फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। अब भोपाल में होने वाली सभी बैठकें ऑनलाइन मोड में होंगी। दूर दराज से आने वाले अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन बैठकों में शामिल हो सकेंगे। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में भोपाल मुद्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा प्रदर्शनी है। 17 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लोग दुर्लभ और प्राचीन सिक्के देख सकते हैं। भोपाल के उद्धवदास मेहता सेंट्रल सेंटर में आज से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी सीरीज शुरू हो गई है। ये सीरीज 20 मई तक चलेगी और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज एवं न्यूजान एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत। नमस्कार, राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओं, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं:
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
0: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
0: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं,

0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
3: अब सो जाओ।
2: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
4: ये है कहानी।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
2: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।

0: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं, वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोल देना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
1: जी सुबेदार साहब।
0: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहाल।
2: सत श्री अकाल।
3: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाट बना दे यार, सवेर होगी।
5: हैं साहब।
0: ओए वो फायर आ रहा है, झुक जाओ।

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्ष दर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
5: वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। although he wasn't very big, he was strong. And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
6: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
5: On that day, the sun shone bright, and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands, they raced hand in hand. But nobody took Hari's hand. Nobody went near him.
6: Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him.

0: आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित लोक संगीत कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं मनमोहन शर्मा के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत।
1: कही मानो मोर सैया, छोड़ दो नशा अब।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त है सुगम संगीत का। कलाकार हैं तापसी नागराज। पहले इनसे सुनिए ये भजन।

0: इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया

0: यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरलम में आता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his 5-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome. Both the leaders discussed energy cooperation and bilateral trade high amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks,

समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर यूएई के साथ रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ 5 अरब डॉलर के निवेश पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश हाई

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे पर आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने पीएम के विमान को सुरक्षा घेरा दिया। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी। एलपीजी आपूर्ति, पेट्रोलियम रिजर्व और गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर बनाने के समझौते भी हुए। श्री मोदी ने कहा कि भारत हर हाल में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। धार की भोशाला को लेकर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता मनिंद्र कुमार दुबे।
1: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला और न्यायाधीश आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने धार भोजशाला परिसर मामले में कहा कि संरचना का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और मुसलमान मस्जिद की वैकल्पिक भूमि के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक, साहित्यिक और पुरातात्विक संदर्भों से सिद्ध होता है कि यह स्थल संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और यहां देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद था। न्यायालय ने अपने इस फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोजशाला परिसर के 98 दिनों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले में फैसले को भी आधार बनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1958 एक्ट के तहत इस धरोहर की संपत्ति का समग्र प्रशासन और प्रबंधन ASI के हाथ में ही रहेगा। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
0: उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने धार की भोशाला पर आए हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि भोशाला का निर्माण महान राजा भोज ने अपने कार्यकाल में किया था और ये सर्वविदित सत्य है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूँ। वहीं धार जिला प्रशासन द्वारा भी भोशाला स्मारक को लेकर आए निर्णय को देखते हुए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ADP PO भर्ती से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई जबलपुर में एक साथ करने का फैसला किया है। इंदौर और ग्वालियर की पीठों में लंबित याचिकाएं अब जबलपुर ट्रांसफर होंगी। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन में 40 साल की उम्र सीमा को चुनौती दी है। अगली सुनवाई जून के आखिरी हफ्ते में होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम आज से 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। करीब 2 साल बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जब दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल 20 से 100% तक महंगा हुआ है, तब भारत ने सिर्फ 3.2 और 3.4% की मामूली बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सरकारी तेल कंपनियों ने हफ्तों तक घाटा सहकर आम लोगों को महंगाई से बचाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य उज्जैन को लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। 250 जवानों को डीप डाइविंग और अंडर वाटर रेस्क्यू समेत 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है।
2: हमारे कामों को करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी, श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूँ और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव का अनुभूति होती है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि NEET UG 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। मंत्री ने कहा है कि NTA में बड़े सुधार जरूरी है ताकि भविष्य में

मानले न हो। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया की साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रहे। प्रदेश में 75 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। बंपर पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीदी लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस सीजन में रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में आज दो और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही यहां खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 हो गई है। ये दोनों फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से एक हैं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर की थी। उन्होंने खुद नामीबिया से लाए गए पहले 8 चीतों को छोड़ा था। चीता परियोजना के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सभी चीते स्वस्थ हैं और जंगल में अच्छी तरह ढल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब भोपाल में होने वाली सभी बैठकें ऑनलाइन मोड में होंगी। दूर दराज से आने वाले अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन बैठकों में शामिल होंगे। इसके साथ ही विभागीय जांच और पेशियां भी अब ऑनलाइन ही होंगी। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में भोपाल मुद्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा प्रदर्शनी है। 17 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लोग दुर्लभ और प्राचीन सिक्के देख सकते हैं। उज्जैन जिले के नलखेड़ा गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निकिता शर्मा ने 9 गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने IIT मुंबई की टीम से 5 दिन की विशेष ट्रेनिंग लेकर ये काम शुरू किया। निकिता रोज घर घर जाकर माताओं को सही स्तनपान और पोषण के बारे में समझाती थी। उनके इस काम को देखते हुए महिला और बाल विकास विभाग ने उन्हें उज्जैन जिले की पहली मास्टर ट्रेनर बनाया है। भोपाल के उधदास मेहता सेंट्रल सेंटर में आज से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-18 हॉकी सीरीज शुरू हो गई है। ये सीरीज 20 मई तक चलेगी। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरी तरफ IPL में कुछ ही देर बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आगामी सिंहस्थ पर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुना कलेक्टर ने प्रतिमाह आयोजित होने वाले युवा संगम कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना की समीक्षा की। शिवपुरी में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए जनसंपर्क अभियान कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी मानसून के पूर्व बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों के तहत आगरमालवा स्थित मोती सागर तालाब में SDRF और होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अशोकनगर जिले में ई टोकन से उर्वरक न देने पर दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन जारी है। अब तक 3,81,567 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। किसान भाई सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भज्जा भौजी हरों के काजे आकांक्षा बिन्नू की राम राम। तो देखो भज्जारो, आज हमारे सभी जने खुले आंगन में खटिया पे बैठे थे। वो तो एक तरफी गज्जे चारों चल रही थी और बाल बच्चे अपने मोबाइल में लगे थे। अब अपने घर के बड़े बुजुर्ग हमारे दादा ने अपने लड़का मोहन खुटेरू बेटा इतने आओ तो नक का दिन भर मोबाइल में लगी रात, बस इतो बता दो कि दिन भर का आधे खतरा तनक हमारे लो बैठ जाए करे। हम तो मैं वो घंटिया से उमदा बातें बते हैं जो उनसे तुम्हारा जीवन समर है, इमें का धरो। सो दूसरो लड़का रामू बोलो, दादा सही है कह रहे है, पहले तो अपन और चौपा लगा के बैठा था ते, बातें करबो खाना खाबो जो सब कछु संगे हो था तो अकेली ना तो अब्बा वो टैम रहो ना वो जमान हो रहो ना भाई आजकल के बाल बच्चा सुना थे और ना तो टैम रहो के सब जने इकट्ठे बैठ के जो सब कछु कर पावे। जमानो जाने क्या आए जा रहो, एक दूसरे के काजे टैम ही नहीं है, एक अरसो निकल गाओ कब से सब ने संगे बैठ के खाना नहीं खाओ। सो दादा कान लगे, तुम्हारे आजकल के बाल बच्चे हमारों की सुनत कहाँ हो, अब हमारे पर गए अनपढ़, तुम्हारों ने ज़्यादा पढ़ लाओ सो परिवार की कीमत जानते ही नहीं आ। मोहन बोलो, दादा ऐसो नहीं आ, अकेले सवेरे से रात कैसे हो जात देख तो रहे, अकेले जोन बात आपने कही सो बाबा सोई सो आना सही है कह रहे, अकेले हम का बता देवें का कह देवें। दादा बोले, हमें न बताओ, तुम जान लो कि परिवार को संगठन परिवार को इकट्ठो हो वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत और मजबूती कहावत है। उत्तई में पड़ोस के कक्का हरे आ गए और बोले, भज्जा आज स्कूल में सोए विश्व परिवार दिवस मनाओ गाओ। और बच्चों ने ऐसी उम्दा उम्दा प्रस्तुति दई कि मन एकदम प्रसन्न हो गओ और तनक उदासी सोई आ गई जो सोच के कि पूरी जिंदगी निकल गई यही सब में। सवेरे से कर जाओ काम पे, जब काम पे जाओ सवेरे से सुपतो चलो के बाल बच्चे अभी उठे नहीं हैं सो के, और जब लौट के आए काम से सुपतो चलो के बाल बच्चे फिर से सो गए, और जैसे जैसे बाल बच्चे बड़े होते जा रहे मानो बड़े हो गए सो उन लोग टाइम नहीं है। अब हम अपन और कीसें और का कह देवे है कि नहीं, मानो कक्का जैसो लग रहा हो कि जी लो जितो जैसो कछु है उसे में खुश रहो चाहिए और संगे रहवे वारों को खुश रखो चाहिए। अपनो जमानो फिर भी ठीक ठाक है तो आज की मोड़ा मोड़ी तो परिवार का हो समझ के भी नहीं समझत। सो हमारे दादा बोले, भज्जे ऐसो है परिवार कहावत है जीवन की छाया, जिन्हें हर मुश्किल में साथ निभा दो, दादी की सीख दादा को ज्ञान, घर खो देत है नई पहचान, माँ की ममता पिता को प्यार, इन्हीं से महकत है पूरो संसार।

0: मनमोहन शर्मा भट जैसा जो उम्दा लोकगीत सुन के जो समझ में तो आ गओ कि माँ बाप को घर में हो वो चारों धाम से कम नहीं है। हम तो कह रहे हैं चारों धाम घूमने से पहले घर को मंदिर पहचानो, माँ बाप की सेवा करके जीवन को सुख पालो। मोहन बोले, दादा आप और बातें करो, हम जाते ना खेत पे साफ सफाई करने, मिट्टी की जांच पड़ताल करवाऊँ ने, जबई तो आगे की फसल हो पे है। सुध दादा बोले, हाओ भज्जा ठीक है, जाओ जाओ, अब तो तुम्हें खुआ सब कछु सामान ने कहा है, हमारी तो उम्र हो रही अब धीरे धीरे, सो अब तुम्हें के हवाले है सब कछु। और जो बात ध्यान में धरियो कि फसल की बुबाई के पहले ही भूमि की तैयारी कर लो चाहिए। ई के बारे में और कछु जानने हो तो हमारे मित्र डॉक्टर पी के जैन भज्जा से फल बागों के लाने भूमि की तैयारी के बारे में उम्दा जानकारी मिल जाए है, सो उनकी सोई सुनत जाइयो तनक।
1: किसान भाई बहनों राम राम। हमारे फल बाग हमको ढेर सारा फल देते हैं, वो चाहे हमारी मेहनत का हो चाहे हमारी भूमि की मेहनत का हो। तो ये फल प्राप्त करने के लिए हमें कुछ तैयारी करनी होती है। इन तैयारियों में पहला आदान जो आता है वो हमारी भूमि आती है, और भूमि की तैयारी के बिना हमारे फल बाग अच्छे हो ही नहीं सकते। तो आज बात करते हैं फल बागों के लिए भूमि की तैयारी की डॉक्टर पी के जैन साहब से। जैन साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: और फल बाग की बात चलिए तो इसकी स्थापना के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी हमें?
2: जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि फल जो होते हैं उनके वृक्ष दीर्घजीवी होते हैं, एक बार लगाने के पश्चात वो वर्षों वर्ष तक 50 साल तक फल देते हैं, अतः ये फल बाग स्थापना के लिए आवश्यक होता है।

0: कि फलों की किस्म का चुनाव और
1: जी
0: उसके साथ ही साथ उसके लिए उपयुक्त तो भूमि का चुनाव
1: जी
0: बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि आपको मालूम है, ठंडे स्थानों के लिए नाशपाती, सेब इत्यादि किस्में तथा अधिक गर्म स्थानों में बेर, खजूर इत्यादि लगाए जाते हैं। और जो समशीतोष्ण जलवायु होती है,
1: जी
0: जैसा कि अपने क्षेत्र में पाई जाती है, इन क्षेत्रों में आम, अमरूद, पपीता, संतरा, मौसम्बी इत्यादि उपयुक्त होते हैं। अतः पहले फल चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, फल प्रजाति के पश्चात उसकी किस्म का चुनाव निश्चित करना चाहिए।
1: जी
0: और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि फल उद्यान की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि का चुनाव करें। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि स्थल का चुनाव भी सोच समझ कर किया जाए।
1: तो क्या सोचना समझना होगा जब हम स्थल का चुनाव करेंगे?
0: जी, ये बहुत आवश्यक है कि फल उद्यान के लिए ऐसे स्थल का चुनाव करें जहां कम से कम 2 मीटर गहराई तक कड़ी चट्टाने ना हो,
1: जी
0: क्योंकि इनकी फल वृक्षों की गड़ें गहरी जाती हैं। भूमि में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो तथा ग्रीष्मकाल में भूमि चटकती ना हो, क्योंकि जो चटकने वाली भूमि होगी उसमें फल वृक्ष की जड़ें सूख जाएंगी और बाद में फल उद्यान पर विपरीत प्रभाव देखा जाता है।
1: जी
0: सबसे अच्छी उत्तम मिट्टी जो दोमट या कछारी हो तो फल उद्यान के लिए अधिक उपयुक्त होती है।
1: ये तो आपने हमें बता दिया कि भूमि किस तरह से हम लें, अब बताएं कि इसकी तैयारी कैसे करें।
0: जी, ये बहुत आवश्यक है कि स्थल के चुनाव के पश्चात जो अपना क्षेत्र है उसमें से झाड़ियों की सफाई कर लें, जो उसमें ठूंठ लगे हुए उन सभी की सफाई कर लें और एक बार ग्रीष्मकाल में उसकी गहरी जुताई कर दें, और
1: जी
0: जहाँ तक संभव हो तो इसी समय थोड़ा सा भूमि का समतलीकरण कर लें।
1: इसके बाद क्या करना होगा?
0: जी, उद्यान लगाने के पहले जानवरों से इसकी रक्षा हेतु कटीले तारों का घेरा चारों तरफ बना दिया जाता है।
1: जी
0: इसके स्थान पर तारों की जाली भी लगाई जा सकती है, जिससे छोटे जानवरों का भी प्रवेश रोका जा सकता है। चूंकि ये फल बाग में स्थापित किए गए वृक्ष धीरे धीरे विकसित होते हैं, अतः उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है। बाग के चारों तरफ वायु अवरोधक वृक्षों को कतार में लगाया जाता है,
1: जी
0: जो कि बड़े होकर तेज हवाओं से अथवा गर्म हवाओं से फल एवं वृक्षों की रक्षा करते हैं। वायु अवरोधक पौधों के रूप में देसी आम, जामुन, इमली, महुआ, नीम अथवा शीशम उपयुक्त होते हैं और इन्हें बाग के दक्षिण पूर्वी दिशा में लगाया जाता है।
1: जैन साहब, उद्यान की स्थापना के लिए और क्या तैयारी करनी होगी हमें?
0: जी, ये तो स्थल और भूमि की तैयारी हुई।
1: जी
0: इसके पश्चात जो फल वाले पौधों को लगाना है, उसके पहले हमें फलोद्यान में सड़क, रास्ते, पानी की नालियाँ तथा जल निकास की नालियाँ, भंडार गृह और ट्यूबवेल, कुआं इत्यादि जो सिंचाई के साधन हैं उनकी योजना तैयार कर लेनी चाहिए।
1: जी
0: इसके पश्चात सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है उद्यान का रेखांकन करना।
1: इसी बात पर मैं आना चाह रहा था कि रेखांकन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में बताएं।
0: जी हाँ, रेखांकन का मतलब होता है फलोद्यान की रूपरेखा बनाना।
1: जी
0: जो हमारा फलोद्यान का क्षेत्रफल है उसमें किस स्थान पर हम फलों को लगाएंगे, कितनी दूरी पर लगाएंगे, सिंचाई और जल निकासी की क्या व्यवस्था होगी, पौधशाला के खाद के गड्ढे किधर होंगे, रास्ते किधर बनाए जाएंगे, जो
1: जी
0: फलोद्यान में हमें भंडारण इत्यादि के लिए भवन इत्यादि बनाया जाए उसकी रूपरेखा हमें बना लेनी चाहिए। फल वृक्षों का स्थान आपस की दूरी पर निर्भर करता है।
1: मतलब एक तरह से खाका या नक्शा ऐसा
0: जी
1: बन
0: जी
1: जाएगा किस
0: जी
1: तरह से
0: हाँ
1: हमको क्या करना है।
0: जी,
1: अब जो अलग अलग फल वृक्ष हैं उनके लिए क्या दूरी रखनी चाहिए, ये आपसे हम पूरी तरह से जानना
0: ये
1: चाहेंगे।
0: सीधी सी बात है, जो बड़े आकार के पौधे होते हैं जैसे आम, कटहल, बेर, आंवला, जामुन इत्यादि,
1: जी
0: इनके लिए 10 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और 10 मीटर कतार से कतार की दूरी रखी जाती है।
1: जी
0: इसी प्रकार जो मध्यम आकार के पौधे होते हैं जैसे अमरूद, नींबू, संतरा, मौसम्बी, सीताफल इत्यादि,
1: जी
0: इनके लिए 5 से 6 मीटर, और जो छोटे पौधे होते हैं जैसे केला, पपीता, करौंदा, अंगूर इत्यादि, इनके लिए 2 से 3 मीटर की दूरी उपयुक्त होती है।
1: जी
0: इसी प्रकार जो इनके गड्ढों का आकार है उसका भी निर्धारण किया जाता है। जो बड़े आकार के पौधे होते हैं उनमें 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर, इसका मतलब कि गहरे, चौड़े और लंबे गड्ढे बनाए जाते हैं।
1: जी
0: छोटे वृक्षों के लिए 1/2 मीटर चौड़ा, 1/2 मीटर गहरा और 1/2 मीटर लंबा गड्ढा बनाना पर्याप्त होता है।
1: डॉक्टर साहब, इसके बाद हम यदि फल वृक्षों को लगाते हैं इन गड्ढों में, उसका
0: जी
1: तरीका क्या होगा?
0: जी ये बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानी पूर्वक पौधों का रोपण करें। तो जो कि गड्ढों की खुदाई है, इसे हम ग्रीष्मकाल में कर लेते हैं
1: जी
0: और मानसून आने के पूर्व इन गड्ढों को भर दिया जाता है। इन गड्ढों की मिट्टी में से कंकड़ पत्थर निकाल लें और इसमें गोबर की खाद और दीमक नाशक दवा मिलाकर गड्ढे भर लें।
1: जी
0: यह क्रिया वर्षा के प्रारंभ में पौधरोपण के पूर्व कर लेनी चाहिए।
1: तो फिर पौधरोपण कैसे करना होगा?
0: जी, इसके बाद की अगली जो कार्रवाई होती है फल

0: उद्यान की स्थापना में वह पौधरोपण। यह किसान भाई ध्यान रखें कि पौधों को गड्ढे में गहराई में लगाया जाना चाहिए और यह गहराई वही होती है जो पौधशाला या पॉलीथिन में थी। ज़्यादा गहरा पौधा लगा देने से उसका जो जोड़ है वह सड़ने लगता है और ज़्यादा ऊंचा लगा देने से उसकी जड़ें खुल जाती हैं।
1: जी
0: पौधा लगाने के पूर्व उसकी निचली पत्तियां तोड़ देना चाहिए और पौधे को सीधा लगाएं तथा चारों ओर की मिट्टी दबा दें। पौधा लगाने के तुरंत पश्चात सिंचाई करें और जहां तक संभव हो पौधे को शाम को अथवा बादल छाए रहने के मौसम पर लगाना उचित होता है।
1: तो ये तो हमने एक तरह से पौधे लगा दिए, आपने पूरी जानकारी दे दी। अब पौधे लगाने के बाद क्या क्या देखभाल करनी होगी?
0: जी, ज़्यादा करके पौधे लटकने लगते हैं तो आवश्यक होता है कि बांस या किसी मजबूत खूंटी को पौधे के नज़दीक गड़ाएं और इसके साथ पौधे को बांधकर सहारा देना चाहिए ताकि तेज हवाओं से पौधे का टूटने का भय ना रहे।
1: जी
0: और जैसे आम इत्यादि पौधे हैं तो इसमें कलम का हिस्सा कमजोर होता है और उसको सहारा देना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि पौधरोपण के पूर्व उसमें आवश्यकता अनुसार स्फुर और पोटाश की मात्रा मिला दें और नत्रजन की आधी मात्रा मिला दें।
1: ये तो देखभाल की बात हो गई। हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी सावधानी रखनी होगी?
0: फल उद्यान के उचित विकास और फलन हेतु स्थल का चुनाव सावधानी पूर्वक करें। उद्यान हेतु भूमि अनुसार फल किस्मों का चुनाव करना चाहिए
1: जी
0: तथा यह भी आवश्यक है कि उचित रेखांकन कर फल वृक्षों को वर्गाकार अथवा आयताकार पद्धति से लगाएं। जहाँ तक संभव हो पौधे वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लगा देना चाहिए। जहाँ अधिक वर्षा होती हो वहाँ सितंबर माह में लगाएं और जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है वहाँ पौधे फरवरी मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह आवश्यक है कि निश्चित दूरी पर पौधे लगाएं और इसके लिए जो प्लांटिंग बोर्ड एक टुकड़ा होता है
1: जी
0: उसका भी उपयोग किया जा सकता है। पौधे कम से कम 1 साल पुराने हों, स्वस्थ हों और ओजस्वी हों। गमले या पॉलीथीन में जो तैयार किए जाते हैं पौधे
1: जी
0: वह मरते कम हैं और उत्तम होते हैं। जमीन में निकाले गए पौधों में मरने की संभावना अधिक होती है।
1: अच्छा,
0: इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि रोपित पौधे के नज़दीक निंदाई गुड़ाई करके खरपतवार निकालते रहें एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करके नमी बनाए रखें। इसके साथ कभी कभी कीट व्याधि की भी संभावना होती है, उससे भी किसान भाइयों को समय समय पर देखभाल करते रहना चाहिए।
1: तो देखा किसान बहन भाई आपने, अब यह समय बहुत अच्छा है, आप अपने फल बागों को तैयार कर सकते हैं और अधिक लाभ ले सकते हैं। जैन साहब, आपने फल बागों के लिए भूमि की तैयारी की बात जो हमें बताई है उसके लिए आपके हम आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो किसान भज्जा और डॉक्टर पी के जैन भज्जा से फल बागों के लाने भूमि की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी ले ली और इमें पूरा बतकाव करो है तो अपने विपिन भैया ने। इसके बाद आज हम और हमारी सहेली सुमन स्कूल पहुँचे। सो कक्षा में बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में चौक से लिखो है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जयंती। जैसे ही कक्षा में हमारे मास्सा आए अवतनई सुमन के सवाल भड़बड़ भड़बड़ शुरू हो गए। मस्साब इनके काजे, अब सुमन आए हुए तो उनने तो बिना ही सांस लाए कहने लगी, मस्साब इनके काजे आचार काय कहो जात। सुमासा बोले, सुमन तनक सांस ले लो और तुमने उम्दा सवाल करो। सबसे पहले बात कि आज हम महान साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जयंती मना रहे और इन्हें आचार्य भी यही से कहो जात कि इन्हें हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती को संपादन करो हतो। संगे संगे नए लेखकों को भी इन्होंने आगे बढ़ावे को पूरो अपनो सहयोग दो हतो। हमने कही, मासा हम सो एक बात पूछ लेवे का? सुमासा बोले, पूछो जा तो उमदा बात या कहाउत, मानो तुम अपने मासाब से ही ना पूछो तो किसे पूछो। हमने कही, मासाब एक बात बताओ, लेखक तो हते अकेले जो बताओ, लेखक के अलावा और का करत हते? का है ना कि जब हमारे को पतो चले तो हमारे तो सोई सुन के कछु उमदा करवे की कोशिश करें। सुमासा बोले, देखो महान पुरुषों की बातें कहानी सुनाई और बताई यही की काजे जाती कि अपन औरें भी हार ना मानवे, उम्दा उम्दा काम कर पावे में सक्षम होवे, अपने जीवन को सफल बनावे। एक महान लेखक होबे के संगे संगे वे एक समाज सुधारक भी हते। उनकी रचनाएं देशभक्ति शिक्षा और समाज सुधारक से भरी भई होत हती। अपन सब को उनसे जो सीख लाओ चाहिए कि अपने जीवन को अनुशासित बनाओ चाहिए और भरपूर मेहनत करो चाहिए, संगे संगे अपनी हिंदी भाषा को सम्मान करो चाहिए। कैसे हिंदी भाषा के हते वे रखवाले ज्ञान और संस्कार बांटा थते।

जी जॉय बता रहे थे कि जीवन सफल बना लो अपनो। सो भैया हम भी जॉय के हैं कि कोनो भी काम करो मन लगा के करो चाहिए। जाई जीवन की सबसे बड़ी सीख होत है। चाहे पढ़ाई करो, चाहे कोनो काम करो, सेवा करो, चाहे पूजा पाठ करो, अगर एकाग्रता से काम करो तो तुम्हें फल भी अच्छो मिले, और अगर मन भटकत रहे तो उनको फल भी अधूरो मिले। कहावत के अपन और आधे अधूरे मन से भक्ति करी, पढ़ाई करी, फिर पता चलो अपने अनुसार को रिजल्ट नहीं मिलत, सो फिर अपन जो ही कहते अरे, फिर वो अरे शब्द रह जात भज्जा रहो। तो जो भी काम करो पूरी श्रद्धा और मेहनत से करो चाहिए। कैसे कि जब आप अपनी श्रद्धा, मेहनत, विचार, अपने अपने विचारों की ऊर्जा वो काम में लगा देते ना, तो वो छोटो सो काम भी महान बन जात। यही से काम हो या फिर पाठ पूजा हो, उखो मन से करो चाहिए। आधे मन से करे गए काम में सफलता नहीं मिलत। श्रद्धा, मेहनत, प्रेम से जब कोनो भी काम होत है ना, तो वो जीवन में सच्चो सुख और सम्मान मिल जात। सो भैया एक बार हम फिर से जाई कहें कि पाठ पूजा हो या कर्म को रास्ता हो, वह मन लगा के चलो तो मिलत है वास्ता। बिना लगन के कछु भी नहीं होत पूरो, सच्ची मेहनत से होत है हर सपनों पूरों।

दीपचंद खातरकर को सुनो भाव लोकगीत अभी अपन गाओ भाव लोकगीत अभी अपन और सुन रहे थे। और भैया भजन करत भय जिंदगी को जियो चाहिए। कहे देखो जिंदगी ईश्वर को दाओ भाव सबसे सुंदर उपहार कहाउत है। ई में देखो सुख भी आउत दुख भी आउत। अकेले जो इंसान हर परिस्थिति में अपनो हौसला बना के रखे और मुस्कुरा के जीवो सीख लेवे वही कह सकत सच्चे और अच्छे अर्थों में जीवन को आनंद ले पाऊत। भजारा देखो जीवन आए सबके जीवन में कभों न कभों छोटी परेशानी आउती बड़ी परेशानी आउती कठिनाइयाँ आउती। बाल बच्चों को पढ़ाई की चिंता रात अपन औरों को काम की चिंता रात तो कभों रिश्तों की चिंता रात। जिस सब परेशानियाँ मन को कमजोर बना देती। अब का होत भैया ऐसे टाइम में हमें हार नहीं मानना है। हार मानवे की बजाय हमें अपने इरादे और हौसले दो मन को मजबूत बना के रखना है। जवाब तो सभी ने सुनी हो जी कि एक अंधेरी रात के बाद सुबेरो होत है। तो बिल्कुल सही बात है ना भैया। रात ना होए तो अपन और सोवे ना और सुबेरो ना होए तो अपन और उठवे ना। तो जैसो जो जैसी जो अपनी दुनिया दिनचर्या चल रही ना कि एक अंधेरी रात के बाद नहीं सुबह आओ तो वैसा ही अपन जा भी कह सकत कि बुरे दिन के बाद भी अच्छे दिन आउत और कठिनाइयों के बाद खुशी के दिन आउत दुख के बाद सुख के दिन आउत। ऐसे खुश हो के जीवे को मतलब जो नहीं है कि जीवन में दुख आवे ही ना बल्कि इको अर्थ जो है कि दुखों के बीच भी उम्मीद और मुस्कान जो को बना के रखत है वो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकत और दूसरों को खुश रखवे में उनकी मदद कर सकत। संगे संगे अपने सपनों के काजें मेहनत भी करत और यही से उनके जीवन में जब दुख आउत ना तो उनकी ज़िंदगी और सुंदर बन जात और खुशहाल बन जात। और सबसे बड़ी बात कि जो भी व्यक्ति परिस्थिति और मुसीबतों को सामना करके खड़ो होतना तो वो इतनो मजबूत बन जात किसान भज्जारो कि फिर भगवान भी सोच लेत कि भैया अब हम तुम्हारे लगा से जा रहे हैं अब तुम जियो अपनी ज़िंदगी है कि नहीं। तो भैया हौसला इंसान की सबसे बड़ी ताकत होत है। अगर मन में विश्वास है तो कठिन रास्ते भी आसान लगन लगत। हमें अपनी असफलताओं से सीख लेके आगे बढ़ो चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत करो चाहिए। हर सुबह हमें कछु नाव करवे को अवसर ढूंढो चाहिए। ऐसे जीवन को कही जाता बोझ न समझो। बोझ तो जीवन को समझो ही ना चाहिए। और वैसे भी अपन अपने दिमाग में जो जो भी कछु सोचत वो अपने चारों तरफ ऐसा हो जात के वो हो ही जाए। अगर हम मानो सोच रहे आज हम सोच रहे कि हम रास्ता से जा रहे हैं और हमें जल्दी घरे पहुंचना है तो जाई सोच हमें घरे जल्दी पहुंचा जाए। हम जो सोच के सोएं कि हमें सवेरे 4 बजे उठना है तो जाई सोच हमें सवेरे 4 बजे अपने आप हमारी आँखें खोल दें। बात अलग है कि आँख खुलवे के बाद भी तुम और फिर से अपन और सो जात। तो जो कहो अपने दिमाग को खेल हो और दिमाग को खेल सोच को खेल ऐसे कही जात कि अपने हौसले अपने हाथ से बनाओ चाहिए। मानो आपके मन के विचार आपकी सोच आपके व्यक्तित्व को दिखाऊत है। तो भैया अपने आप को ऐसो मजबूत बनाओ ना तो आप कोई के सामने अपनी कमजोरी दिखाओ ना अपने दुख दिखाओ। आप जो हैं खुद से हैं खुद में हैं और खुश हैं। बस हमें दुनिया को जो ही दिखाना है। कैसे हमें कभों भी अपने जीवन को बोझ नहीं मानना है। जो मान लो कि जीवन एक खूबसूरत सफ़र है जो मान के अपन को जियो चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखो चाहिए और अपने माता पिता और गुरुजनों को सम्मान करो चाहिए। संगे संगे हमेशा मुस्कुरात रहो चाहिए। कैसे जिंदगी को हौसलों के संगे जियो हर पल को खुशियों के संगे जियो। मुश्किलें तो आती जाती रहती बस अपने सपनों पर विश्वास रखो। और भैया सभी किसान भैया हरों को एक संगे आकांक्षा बिन्नू की राम राम। जय जवान जय किसान।

0: अभी किसान भाई कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। सुर्खियों में कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।

0: Surgiome.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन चौधरी। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। सर, हम शुरुआत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक है, मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, तो इसके बारे में बताइए।
2: प्रधानमंत्री की अगर 5 देशों की यात्रा न होती तो भी प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलते हैं, क्योंकि ब्रिक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसके फाउंडर मेंबर्स में से हैं और अगर इसकी मीटिंग हो रही है जो कि आगे कल्मिनेट होगी समिट में, शीर्ष सम्मेलन में सितंबर में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, तो ये जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलें, उनकी बात, उनका रुख समझें और अपनी

0: भारत की बात बताएं तो ये जरूरी हो गया था, इसलिए जाने से पहले ही प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री ईरान से भी मिले, अराक्ची, उनसे ऐसी क्या बात हुई है? क्योंकि अभी युद्ध, अभी सीज फायर हुआ है और ब्लॉकेड भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां पे तेल का आना जाना रहता है।
0: देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग जो होती है, हमारी सबसे बड़ी डिमांड या सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का होता है क्रूड ऑयल, और वो हम 80% से ज्यादा मध्य पूर्व से लेते हैं, पश्चिम एशिया भी जिसको कहते हैं। अब इस क्षेत्र में अगर हॉर्मुज के उस पे स्ट्रेट पे पाबंदी लग जाती है, आवागमन पे रोक लग जाती है, तो हमारी ऊर्जा जरूरतें इससे बड़ी बुरी तरह प्रभावित होती है और प्रभावित हो रही, देख रही है आपने, तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे टैंकर्स, भारतीय ध्वजवाहक टैंकर्स जो अगर वहां से आ रहे हों तेल लेकर के या एलएनजी लेकर के या और ऊर्जा के स्रोत लेकर के, तो उनको आने दी जाए, उनको लिए कोई परेशानी का सबब न हो। और इसलिए हम ईरान से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ईरान एक दोस्त के तौर पे, एक मित्र राष्ट्र के तौर पे हमारे तेल वाहक टैंकर्स को आने देगा। और इसलिए आपने देखा कि शुरुआत में भी जब ये ईरान ने वहां पे माइन बिछाई तो भी उसके बाद भी ईरान ने कहा कि हाँ, हम कुछ भारतीय, कुछ देशों के टैंकर्स को आने देंगे, उसमें भारत भी था। बीच में अब जब अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी, तब भी कुछ परेशानी हुई, लेकिन हमारी यही कोशिश थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात तो जरूर कही होगी, और जब मिले होंगे तो ये बात भी कही होगी उन्होंने कि ईरान और यूएस के बीच में जो संघर्ष है उसका अंत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे विश्व पे और ग्लोबल साउथ पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, छोटे देशों पे ज्यादा पड़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से भी मिले हैं। रशिया के साथ हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, डिफेंस में, ऑयल इंपोर्ट्स में भी। यहाँ पे उन्होंने बात की है कि हम गैस भी आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का क्या कहना है और हमारे प्रधानमंत्री इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
0: देखिए, रूस के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, और जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी तो अमेरिका ने हमें सशर्त देने के लिए कहा था गेहूं, लेकिन रूस ने उस वक्त कहा था कि आप हमें बस पोर्ट बताइए, किस पोर्ट पे और कितना चाहिए, प्राइस और सारे मॉडलिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे बहुत पुराने संबंध 70 साल 75 साल से ज्यादा के संबंध रहे हैं। आपने जैसे कहा कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, हम क्रूड ऑयल लेते हैं, हम फर्टिलाइजर लेते हैं, एलएनजी भी हमें अब चाहिए क्योंकि हमारी मध्य पूर्व की सप्लाई कभी कभी डिसरप्ट हो जा रही है, तो इसलिए एलएनजी भी हमें चाहिए होगी। तो हमारे ख्याल से तो हम यही करेंगे कि अमेरिकी सैंक्शन या अमेरिकी धमकियों के बावजूद भी हम सप्लाई रूस से लेते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय हित में है और जितनी हमें ज़रूरत है, और रूस हमें अनवरत सप्लाई देता है और वो भी हमें अच्छे टर्म्स पे सप्लाई देता है। तो इसलिए हमें रूस से, अभी जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते हैं निकोबार की खाड़ी में, जब तक हमारी आयल की दोहन की प्रक्रिया चालू नहीं हो जाती, तब तक तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है कि हम रूस से तेल लेते रहें।
1: प्रधानमंत्री ब्राजील के विदेश मंत्री से भी मिले हैं, वियरा। ब्राजील की क्या भूमिका है ब्रिक्स में?
0: देखिए, ब्राजील एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हो जाता है, ये संस्थापक सदस्यों में से है। पांच जो संस्थापक सदस्य थे, भारत, रूस, चीन, ब्राजील, और उसके बाद में साउथ अफ्रीका बना। तो ब्राजील का बहुत महत्व इसलिए भी हो जाता है कि ब्राजील ही एक ऐसा देश है जो किसी भी देश की दादागिरी के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हो। दूसरी चीज ये है कि ब्राजील ही, देखिए, जब डीडॉलराइजेशन की बात हुई ब्रिक्स में, ब्राजील ने कहा कि ठीक है, हम अपनी अपनी करेंसी में हम व्यापार करेंगे। और ब्राजील वैसे भी एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशंस तो हमारे बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही ब्राजील से बहुत अच्छे हैं, और हमारे साथ ब्राजील हर इंटरनेशनल रीजनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा है। ट्रेड रिलेशंस भी हमें बढ़ाने होंगे, क्योंकि कई चीजों में ब्राजील सबसे आगे है, और इसलिए अभी से अगर हम ब्राजील का साथ कंटिन्यू करते हैं ट्रेड रिलेशंस में, तो आने वाले वक्त में हम दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद ये बात साबित होगी। इसलिए जरूरी है कि हम ब्राजील का साथ देते रहें।
1: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट।
2: During the course of two-day foreign ministers meeting, discussion took place around three broader themes: global and regional matters, reform of global governance and multilateral system, and BRICS at 20 under the theme building for

0: resilience, innovation, cooperation, and sustainability. These three sessions allowed members to exchange views and share perspectives on main pillars of BRICS strategic partnership, political and security, economic and financial, and cultural and people-to-people relations. The session on the theme BRICS at 20 allowed members to reflect on the evolution of the grouping in the last two decades and its growing relevance in addressing contemporary global challenges. Ministers also reflected on the nature of the cooperation under BRICS during India's chairship this year under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, as well as the future direction of the grouping.
1: BRICS ke theme jo hai usme kaha gaya hai ki hum koshish karenge resilience, innovation, cooperation aur sustainability. Aur unhone baat ki hai ki reforms, global governance aur multilateral system. Multilateralism pe kafi charcha hui hai. Iske bare mein bataiye.
2: Dekhiye, shuru mein दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो खेमे थे, कम्युनिस्ट खेमा और अमेरिका का खेमा. उसके बाद यूएसएसआर के विघटन के बाद सिर्फ अमेरिका का खेमा बचा और वो भी पूर्व की ओर बढ़ता गया, यहाँ तक कि यूक्रेन पहुंच गया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, 3 साल से ऊपर यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हो रहा है. ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसा सिस्टम जो कि पहले सिर्फ कुछ मुट्ठी भर देशों के फायदे के लिए बनाया गया था, एक आवरण बना करके, भले ये कहा गया था कि ये दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा और पोस्ट वर्ल्ड वार बड़ा अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये सिद्ध हो गया कि साहब ये सिस्टम चल नहीं सकता, खासतौर से इसलिए कि छोटे छोटे देशों या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सब के लिए बहुत परेशानी का सबब हो जाएगा. तो ये माना गया कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए. और अब मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के चलना, और वो तभी संभव हो सकता है जब आप उन देशों के बीच में एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढें जो उनके नेशनल ऑब्जेक्टिव से, नेशनल इंटरेस्ट से मेल खाता हो. वहाँ से हम शुरू करें और तब उस पर हम, वो न्यू रहेगी और उस पर एक हम बिल्डिंग बनाएं, वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगी. अब जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा ब्रिक्स का इनोवेशन, रेजिलियंस की आजकल बहुत बात हो रही है, इनोवेशन की ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन जो हमें चाहिए अभी ब्रिक्स कंट्रीज को क्या, बल्कि जो ग्लोबल साउथ को, वो इनोवेशन ज़्यादा जरूरी है. जो हमारे संसाधन हैं उसका प्रयोग करते हुए हमें कैसे दूसरे उपाय ढूंढने चाहिए जिनसे कि हम ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा मिनरल्स का दोहन कर सकें. तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मल्टीलेटरलिज्म, हम बहुदेशवादी या बहुक्षेत्रवादिता में विश्वास रखें.
1: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट.
0: The outcome documents cover common position on BRICS cooperation in areas such as global and regional matters, reform of the institution of global governance, including reforms of the UN Security Council, international financial institutions, fight against terrorism, trade, industry, finance, artificial intelligence, energy security, climate, biodiversity and sustainability, health and enhancing agriculture productivity and ensuring global food security and nutrition, supply chain resilience, disaster reduction, and of course, people-to-people exchanges, which is also a very key priority for our chairship. As you are all aware, the world today is navigating a period of unprecedented geopolitical and economic uncertainty, ongoing conflicts, economic volatility, climate-related risks, advancement in technology and associated disruption, supply chain challenges and disruptions are reshaping the global landscape. All these matters are also interlinked and have consequences for BRICS members, and I would say also for countries in the global south. There is a common view that BRICS must work purposefully in seeking common grounds for achieving practical, actionable, inclusive and development-oriented solutions through sustained engagement.
1: ये भी मांग रही है कि UN के प्रक्रिया में सुधार आना चाहिए. UN Security Council का जो membership है, permanent membership है, उनके पास veto power है. तो इसको लेके ऐसी क्या चर्चा हुई है इस बैठक में?
2: देखिए, इस बैठक में ये चर्चा हुई है कि इसको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ को और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को, और उसके लिए जरूरी है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए. दुर्भाग्य से पिछले शताब्दी से ही ये बात होती रही है, लेकिन देशों के अपने राष्ट्रीय हित एक दूसरे से इस तरह टकराते रहे हैं कि देश इस मामले में कहीं भी कॉन्सेंसस या सर्वसम्मति नहीं स्थापित कर पाए हैं. वीटो सिस्टम जो है वो एक बीमारी है, मैं कहूँगा. आपने आज की दुनिया में जहां लोकतंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहां पर आपने एक तरह से डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया है। अब होता क्या है कि जिस देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव होता है, अब वो देश तो

0: असंतुलन वहाँ सुरक्षा परिषद में कम किया जाए, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और देखिए लेकिन इसमें कहाँ तक प्रगति हो पाती है कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात कई वर्षों से चल रही
1: है। जियोपॉलिटिक्स का कोई समाधान है ब्रिक्स के पास?
0: देखिए मेरे ख्याल से तो जियोपॉलिटिक्स का समाधान न संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है और न ब्रिक्स के पास है, इसलिए कि जब तक जियोपॉलिटिक्स में देश अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ अंशों को छोड़ना न चाहेंगे या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और तब तक यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में इसी तरह से लड़ाइयाँ होती रहेंगी कि एक दूसरे के साथ नेशनल इंटरेस्ट, एक का नेशनल इंटरेस्ट दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट में दरारें डालता है, तो ऐसे में तो ये खाई पटने के बजाय बढ़ती जाएगी। इसलिए समाधान ये है कि अगर देश बैठ के ये सोचें कि हमें ठीक है अपने अपने विकास के लिए दूसरे के विकास को अवरुद्ध नहीं करना होगा, तभी इसमें कुछ काम निकल सकता है।
1: अभी समस्या जो है वो है कि तेल का आना जाना मुश्किल हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्रिक्स क्या कर सकता है इसमें?
0: देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से ईरान को ब्रिक्स ये कह सकता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोली जाए, क्योंकि विश्व में जो भी मैन मेड, जो भी मानव निर्मित स्ट्रेट हैं, जल डमरू मध्य है, वो उस पर तो उन देशों का कब्जा हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है जो उसके आसपास हो, जैसे स्वेज इजिप्ट का या जैसे पनामा का था चीन,
1: ये सारे मैनमेड है,
0: मैनमेड है। लेकिन जो नेचुरल है वो बाब अल अंदब है या हुरमुज है, मलाका है, पाक स्ट्रेट है, ये जो है ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, और इन प्राकृतिक जल मार्गों पर किसी भी देश का अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से एक क्षत्र राज्य या प्रभुत्व नहीं हो सकता। तो इस दिशा में ईरान को ये कहा जाएगा, क्योंकि अगर हम ईरान की ये बात मान लेते हैं तो ये एक नई समस्या का जन्म देगा कि जो और बाकी स्टेट्स मैंने कहा है नेचुरल, उसमें वहाँ के देश उन पे कब्जा करें और उन पे अपना अधिकार जमाने की बात करेंगे, और ये एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि हर कुछ किलोमीटर पे आप टोल टैक्स देना पड़ेगा कंसर्न देश को, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश यही करनी होगी ब्रिक्स को कि ये कहें कि ईरान वहां से अपना एकाधिकार न बताए, थोड़ा कंट्रोल रखे, ठीक है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और साथ ही यूएस को ये कहना पड़ेगा कि वहां पे नाकाबंदी न की जाए क्योंकि वो मैनमेड नहीं है।
1: जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए आकाशवाणी में और आपने बड़े चर्चा की। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष, शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत बाजीगर फिल्म से बोल देव कोहली के संगीत अनु मलिक का, आवाज़ कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की।

जयतन ललित की बनाई तर्ज पर अनवर सागर की शब्द रचना अब हम आपको सुनवाते हैं। आवाज अभिजीत और अलका याग्निक की, फिल्म का नाम खिलाड़ी।

आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों को फिल्म हथकड़ी में। शब्द रचना मजरू की थी, संगीत था बप्पी लहड़ी का। आइए अब सुनते हैं जतिन ललित की बनाई धुन पर मजरू का लिखा गीत, आवाज़ उदित नारायण और साधना सरगम की, फिल्म का नाम जो जीता वही सिकंदर।

आकाशवाणी जबल प्रदेश श्रोताओं इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं कलाकार फिल्म के लिए इंदिवर का लिखा गीत संगीत कल्याण जी आनंद जी का आवाज किशोर कुमार की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ॉन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्यवाही का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई

0: भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।

0: पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
6: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathamikta hai. इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
5: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that it looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. We have more from a West Asia correspondent.
7: The talks yielded a wide range of agreements on energy. India Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels. A long-term LPG supply arrangement between Indian Oil Corporation and ADNOC was also concluded. On defense, the two sides signed a framework for a strategic defense partnership covering industrial collaboration, maritime security, cyber defense and information exchange. $5 billion in UAE investment to India was announced. $3 billion from the Emirates New Development Bank into RBL Bank, $1 billion from the Abu Dhabi Investment Authority into priority infrastructure projects, and $1 billion from the International Holding Company into Sammaan Capital. The two countries also signed agreements to establish a ship repair cluster at Vadnagar, a skill development framework for the maritime sector, and an agreement to set up an exaflop supercomputing cluster between India's SeaDAC and UAE's G42. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
5: Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Speaking to Akashvani, Ambassador Deepak Mittal said, India and the UAE have taken several strategic decisions during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi to deepen cooperation in energy, technology, investment and trade.
8: Today, the visit of the Honorable Prime Minister, there were very strategic announcements, long-term decisions to deepen India's energy security and to deepen energy partnership between India and the UAE. The discussions between the leaders today also touched upon technology, the decisions to set up 8 exaflop supercompute facility in India, which will be based upon the Cerebras chip technology. That will form a very important part of our AI mission. Associated with was also the UAE decision to also partnership in developing the ship repair cluster in the Vadina in India.
5: Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers call for more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening the shared planet and futures such as climate change. Briefing media New Delhi after the conclusion of BRICS foreign ministers' meeting, Secretary of Economic Relations and Minister of External Affairs Sudhakar Dalela said all the BRICS members and partner countries were highly appreciative and supportive of India's chairship priorities under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.
9: All the BRICS members and partner countries were very appreciative and supportive of India's chairship priorities on the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Building on this deliberation in the last 2 days and based on these discussions, we have issued as chair statement and outcome document. It captures the common position of BRICS members on almost all the subjects under the three pillars of BRICS strategic partnership.
5: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers' meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. Jaishankar said the breadth of the meeting reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateral cooperation in a rapidly changing world. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Foreign Minister of Iran Abbas Araghchi today addressed a press conference in New Delhi. He said there is no military solution to anything related to Iran. He said Iran is ready to help pass all vessels through the Strait of Hormuz. The Iranian Foreign Minister said Iran would welcome any constructive role by India.
10: I think India, with its good reputation, can play a greater role in this region to help diplomacy, to help peace, and to promote peace and security. India is a friend to all countries in the Persian Gulf, in north of this Gulf, and in the southern part of that. So we appreciate any positive, constructive role played by India in this region.
5: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested the kingpin in connection with alleged irregularities in paper leak related to NEET UG 2026 examination. The agency said that P.V. Kulkarni has been arrested at Pune after thorough interrogation. P.V. Kulkarni is a chemistry lecturer involved in the process of examination on behalf of the National Testing Agency. He had access to the question papers. The agency has conducted searches at several locations in the last 24 hours across the country and seized several incriminating documents, electronic gadgets and mobile phones. Meanwhile, the National Testing Agency NTA today announced 21st of June as date for reconduct of NEET UG 2026 exam. West Bengal government has suspended three IPS officers in connection with the RG Corps Medical College rape and murder case. Former Commissioner of Kolkata Police Vinit Goyal, former Deputy Commissioner Central Indira Mukherjee and former Deputy Commissioner North Abhishek Gupta have been suspended today due to alleged dereliction of duty, offering money to the victim's parents and conducting media briefings without government authorization. Chief Minister Subhendu Adhikari informed the media that a departmental inquiry would be conducted against them by the state government. The Supreme Court had announced a series of fuel conservation measures in line with the centre's broader push to cut fuel consumption amid the ongoing West Asia crisis. The measures include virtual hearings and miscellaneous days carpooling by judges and work-from-home arrangements for registry staff. Union Defence Minister Rajnath Singh today laid the foundation for Advanced Medium Combat Aircraft AMCA program facility with Chief Minister N. Chandrababu Naidu in the Sri Satya Sai district of Andhra Pradesh. Addressing the gathering, the Defence Minister said the newly launched defence projects would strengthen national security, accelerate industrial growth and create large-scale employment opportunities for youth.
11: For important issues like national security, we cannot always depend on other countries. That is why all these projects being launched today are not only extraordinary but truly historic. Such high-tech flight testing facilities are available only at a selected few places in the world. And now, Putra Parthi is set to join that distinguished list of locations from where fifth generation aircraft will soar into the skies.
2: Fifth generation aircraft aasman chuega.
5: The Madhya Pradesh High Court today declared the Bhotshala complex in Dhar district a Hindu temple. The court said that a temple of goddess Saraswati existed there and the site was a centre of Sanskrit learning. The Muslim side calls it Kamal Maula Mosque. The court cancelled the earlier order that allowed Muslims to offer namaz at the site. It said that the Muslim side can approach the government for alternative land to build a mosque. India's total exports comprising merchandise and services are estimated at $80.8 billion in April 2026, registering a robust growth of 13.6% over April last year. The Department of Commerce has said that the country's petroleum products exports grew by 34.66% in April 2026, reaching $9.59 billion, reflecting a strong export momentum. Non-petroleum exports reached $33.97 billion in April 2026, recording a healthy growth of over 9%. The India Meteorological Department IMD has forecast heat wave conditions over Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. Heavy to very heavy rainfall is predicted in the Andaman and Nicobar Islands tomorrow and for the next 2 days in the southern states and parts of northeastern region. IMD has said that the southwest monsoon is likely to set in over Kerala on the 26th of this month with a model error of plus minus 4 days. It added that the conditions are favourable for the advance of southwest monsoon over parts of South Bay of Bengal, Andaman Sea and Andaman and Nicobar Islands during the next 24 hours. The Indian Wushu team delivered a commanding performance at the 11th Sanda World Cup, winning 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals in Macau. The women athletes in particular put up a stellar display by securing both gold medals from the six-member contingent. In the women's 75-kilogram category, Border Security Force athlete Shivani defeated a Russian opponent to clinch the gold medal. Aparna also produced a brilliant performance in the 52-kilogram category to secure India's second gold medal. In the 48-kilogram category, Indian Air Force athlete Kushal Kumar claimed silver medal. At the Asian Under-17

0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विगत 12 मई को शहीद स्मारक सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सुर संध्या सभा के संपादित अंश। संपादक हैं नीला वाजपेयी।
1: नमस्कार। नजर हया में दामन पाक जरूरी है, नजर हया में दामन पाक जरूरी है, जो भी है बात साफ साफ जरूरी है। हम सब बुलंदी पर पहुंचे मगर इससे पहले माँ नर्मदे का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। कल कल करती माँ नर्मदे के किनारे बसी ऋषि जाबाली की नगरी आचार्य विनोबा की संस्कारधानी जबलपुर, जिसमें आज आकाशवाणी जबलपुर द्वारा सुर संध्या सुगम संगीत सभा का आयोजन किया गया है। तम ज्योति स्तंभ रविशचंद्रो विद्युदग्नि तारवा सर्वेशाम ज्योतिषाम ज्योतिर्दीपा नमोस्तुते। हमारी वैदिक प्रार्थना है कि हे ज्योति, तुम अग्नि सूर्य चांद और तारों में भी स्थित हो। आज हमारी आयोजना के दीपाधार पर प्रज्वलित होकर हमारी इस बेला को मंगलमय करो। श्रोताओं, शब्दों का सिनेमा आकाशवाणी सूचना शिक्षा और मनोरंजन का एहसास कराता है। ज्ञान दीपे लेकर हम अपनी सेवाएं प्रसारण के जरिए घर घर पहुंचाते आए हैं और इसी ज्ञान दीप के प्रतीक को अब हम मंच पर भी प्रज्वलित करेंगे। हम आमंत्रित कर रहे हैं आकाशवाणी परिवार के मुखिया उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वलीउल्लाह खान साहब को मंच पर आए दीप प्रज्वलन के लिए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टेलानी सर वो भी मंच पर आए। वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन कुमार यादव भी मंच पर आए। कार्यक्रम संगीत नीला वाजपेयी जी से भी हमारा आग्रह है कि वे भी दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आए। दीप प्रज्वलित करते हुए डीडीजी सर हमारे आकाशवाणी जबलपुर के क्लस्टर प्रमुख, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख श्याम टहलानी जी, दीप प्रज्वलित करते हुए वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी विपिन कुमार यादव, दीप प्रज्वलित करते हुए आकाशवाणी

0: के कार्यक्रम अधिकारी संगीत नीला वाजपेयी जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इस स्वागत की वेला में आप हर्षित दिल से आपका स्वागत करते हैं हम, मीठे सुहावने बोल को अर्पण करते हैं हम। डीडीजी सर का स्वागत बुके से करेंगे हमारे कार्यक्रम प्रमुख श्याम टहलानी सर, उद्घोषक सावनी राजू डीडीजी मैडम का भी स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां, थोड़ा तालियां बजती रहेंगे। कार्यक्रम प्रमुख श्याम टहलानी जी से हमारा आग्रह है कि वे आज की कलाकारा विदुषी डॉक्टर तापसी नागराज जी का स्वागत करें। कार्यक्रम प्रमुख, तालियां बजती रहें। परशुराम सर का स्वागत करेंगे नीलाब जी, जो कि हमारे कार्यक्रम अधिकारी संगीत हैं। परशुराम सर का स्वागत करेंगे। तबला वादक सुरेश पाठक जी का स्वागत करेंगे कार्यक्रम अधिकारी प्रशांत परमार। राजेश जी स्वागत करेंगे, राजेश मरकान जी हमारे लाइब्रेरियन। सुभाष दीक्षित सर का लाइब्रेरियन हमारे राजेश मरकान जी स्वागत कर रहे हैं। मुरलीधर नागराज जी का, अमित जी को भी हम मंच पर बुलाएंगे जो कि हमारे आज के गजल गायक हैं, उनका स्वागत करेंगे विपिन कुमार यादव जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। स्वागत भाषण के लिए वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन कुमार यादव जी से हमारा आग्रह है कि वे माइक्रोफोन पर आए और स्वागत में दो शब्द कहें। विपिन कुमार यादव।
1: नमस्कार। आज के गौरवशाली दिन में उपस्थित यहाँ के समस्त गणमान्य अतिथिगण, कला प्रेमी, आप सभी का मैं आकाशवाणी जबलपुर परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। मित्रों, कुछ संबंध इतने घनिष्ठ होते हैं कि आपको एहसास नहीं होता और जीवन का वो एक हिस्सा बन के साथ चलते हैं। इसी क्रम में संस्कृति को संरक्षित करने वाली और हर जनमानस के साथ साथ श्रुति के रूप में चलने वाली यह आकाशवाणी कब 90 वर्ष तक हमारे साथ चल पड़ी, यह एहसास नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत घनिष्ठता से हमारे साथ थी। 90 वर्ष का ये लंबा सफ़र यहाँ तक पूरा हुआ है, लेकिन ये पड़ाव नहीं है, अपितु एक छोटा सा प्रयास है हमारा, ये याद दिलाने का कि हम आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आज की शाम जज्बातों के नाम हैं और उसी अनुभूति को हम जीना चाह रहे हैं कि 90 वर्ष में क्या अनुभूति रही होगी। हमारे सुपरिचित और सुप्रसिद्ध कलाकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने बातों को यहाँ विराम देता हूँ और हम सब इस शाम में एक होके आनंद लेते हैं इस सुर संध्या सभा का। धन्यवाद।
0: हम गौरवशाली वर्ष में चलिए, हम आपका परिचय कराते हैं उन ख्यातिनाम कलाकारों से जिन्हें हमने अपने आपके मनोरंजन के लिए बुलवाया है। ये हैं डॉक्टर विदुषी तापसी नागराज और अमित कुमार दुबे। मंचासीन हैं विदुषी तापसी नागराज। चलिए सुनते हैं इनसे पहली प्रस्तुति। हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि आप सभी जब चलकर इस हॉल में दाखिल हुए तो एक चुप और खामोश मिट्टी भी आपके पैरों में लगकर आपके साथ यहाँ तक चली आई है। मिट्टी कभी साथ नहीं छोड़ती, यह निर्माण करती है, रंग भरती है और हमारे आपके हिस्से सपने भी संजोकर रखती है। माटी से ही सब कुछ बना है। कभी आपने सोचा कि क्या मिट्टी गाती भी है? अगर गाती है तो इसके सुर कैसे लगते हैं, शब्दों की झनकटती कैसी होती है? हमने आज इस मंच पर ठेठ माटी के सुरों को गाने वाली कलाकार को न्योता है।

0: जी हाँ, इसी संस्कारधानी की माटी से जुड़ी गायिका विदुषी डॉक्टर तापसी नागराज, जिनका गायन आपके कानों से होता हुआ आपके मन बल्कि आपकी आत्मा तक पहुंचेगा और आप मोहक सुरों में रम जाएंगे। आपके साथ बांसुरी पर हैं मुरलीधर नागराज, संगत करेंगे हारमोनियम पर परशुराम पटेल, तबले पर होंगे सुरेश पाठक, योगेश सिंह ठाकुर होंगे ढोलक पर। चलिए सुनते हैं इनकी पहली प्रस्तुति। जोरदार तालियों से इनके गीत का स्वागत किया जाए।
1: सभी श्रुति श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आज का जो आयोजन है सुर संध्या, उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए पूरे आकाशवाणी केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद।

जाने कब की देखा लेती धीरे धीरे प्यार बन गई। आवाज़ है विदुषी डॉक्टर तापसी नागराज की।

चलिए चलते हैं इसी अनंत यात्रा में। सजन व सखी लिखपतियां पिया घर आ जाना, ललित गोस्वामी का लिखा ये गीत है। गायिका है विदुषी डॉक्टर तापसी नागराज। जोरदार तालियां हो जाए।

अब हम श्रोताओं करते हैं विषयांतर और आपको ले चलते हैं गजल की दुनिया की ओर। है और भी दुनिया में सुकनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बेआउर। ऐसे शेर कहने वाले गालिब ने गजल को एक नया अंदाज दिया, उसमें चार चांद लगाए। मीर की गजलें आज भी महक रही और कल भी महकेंगी जैसे फूल की पंखुड़ियां। नाजुकी उसे रब की क्या कहिए, पंखुड़ी तो एक गुलाब की सी है। फैज ने तो गजल के बारे में ये तक कहा है कि दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा सबे गम गुजार के। एक बार फिर से अमित कुमार दुबे के लिए जोरदार तालियां। तेरी जमी से उठेंगे तो हम आसमां होंगे, ये है इनका पहला कलाम है।

फिक्र मोमिन की जुबा दाग की गालिब का बयां आया। मीर का रंगे सुखन हो तो गजल होती है, सिर्फ अल्फाजी मायने पैदा नहीं करते, जज्बा खिदमत से फन हो तो गजल बनती है। जी हाँ, अगली गजल जी हाँ नागपुरी की। बोल हैं पागल नजरें दिल दीवाना लगता है। फनकार हैं अमित कुमार दुबे, वायलिन पर हैं सुभाष दीक्षित, तबला संगति सुरेश पाठक की, ढोलक पर हैं योगेश सिंह ठाकुर।

हम यहाँ बताना चाहेंगे कि टेक्निकल टीम हमारे ऊपर बैठी हुई है। नीरज श्रीवास्तव, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। संजय पाटकर जी, उनके लिए भी तालियां हो जाएं। श्रोताओं, आम्र मंजरी की खुशबू, वन तुलसी की महक, कोयल की कूद, ऋतुओं का मौसम चल रहा है। हम इस मौसम का स्वागत कुछ यूं करते हैं, नई नई पोशाक बदलकर मौसम आते जाते हैं। फूल कहाँ जाते हैं, जब भी जाते हैं लौट आते हैं। तो प्रकृति श्रोताओं, वाकई हमें क्या संदेश दे रही है इन फूलों के माध्यम से, इसी से सराबोर आज की ये सुसंध्या अपनी छटा बिखेरते हुए गुनगुना रही है, कह रही है। चलिए चलते हैं अगली गजल की ओर। फनकार हैं अमित।

मैं गुणी श्रोता बैठे हूं सुनने वाले, तो डर भी लगता है। जिनसे गाना सीखा है वो सामने स्वयं बैठे हैं तो और डर लगता है। और लेकिन मन होता है जब कुछ अच्छा सुनने वाले लोग होते हैं तो एक शब्दों में भीगी हुई गजल, शायरी में भीगी हुई गजल बहुत कम होती है आपके सामने रख रहा हूं।

हमारे गाने बजाने में। एक कहावत होती है कि गाना बजाना या तो करे राजा या करे फकीर, बीच वालों का काम नहीं है, कठिन हो जाता है। तो हम लोगों की जिंदगी देखिए जो बीच वाले हैं जरा।

0: इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, सच्ची लगन हो तो रास्ते भी सरल होते हैं। इसलिए कहता हूँ पीछे मत देखना, शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरे अपने पैरों में। बात बनती है अगर दिल में हो इरादे अटल। ऐसे ही सच्चे अटल इरादे लेकर चलता आकाशवाणी परिवार अंदाज अल्फाज और आवाज की ओर अग्रसर। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टहलानी जी से आग्रह करूंगा कि वे माइक्रोफोन पर आए और कृतज्ञता आभार प्रदर्शित करें। श्यामलाल टहलानी।
1: नमस्कार श्रोताओं, श्रोताओं आप सुगम संगीत की कंसर्ट सुर संध्या में पधारे और कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं प्रतिभागी कलाकारों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। मैं वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके कड़े परिश्रम से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि।
2: अभी आप आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विगत 12 मई को शहीद स्मारक सभागार में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित सुर संध्या सभा के संपादित अंश सुन रहे थे। संपादक थे नीलाभ वाजपेयी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग जोग। तबला पर इनके साथ संगत की है साबिर खान ने।

अभी आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग जोग सुन रहे थे। तबला पर इनके साथ संगत कर रहे थे साबिर खान। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। वक्त है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भावन का। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपके ढेरों फरमाइशी पत्र और उनमें लिखी मधुर गीतों की फरमाइश का सिलसिला श्रोताओं हम शुरू करते हैं। मैंने प्यार किया फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है असद भोपाली ने, संगीत से संवारा राम लक्ष्मण ने। लता मंगेशकर के गाए इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा। घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद किया है संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक वर्मा और छाविंद्र कुमार वर्मा।

महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, दारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, आरती भाव्या और सुषमा सारथी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक, आप सबकी पसंद पर कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में समीर खलका गीत। आइए सुनते हैं संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम फूल और कांटे।

मन भवन कार्यक्रम का अगला गीत इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया। आवाज़ कंचन, मनहर उदास और आनंद की। कुर्बानी फिल्म के इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ बेमितरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी और उनके बहुत सारे साथी। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव जावरकर और संदीप पाटिल।

ग्राम बगबड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आप सबकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को फिल्म क्या यही प्यार है में। राशिद के बोलों को सुरों में ढाला साजिद वाजिद ने।

मनभावन कार्यक्रम का आखिरी गीत रॉकी फिल्म से, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, पसंद हमारे इन श्रोताओं की है। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। आदर्श नगर मलोट से इसी गीत को पसंद किया है राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरव, शाइना और निवान शर्मा ने। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर रॉकी फिल्म का ये गीत।

रॉकी फिल्म के इस गीत के साथ ही मनभावन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला

0: नाथ कोतर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a report of a media house on cess or tax or such

घड़ी में लाइए कंसोल की घड़ी 4:59, 42:42, 43:43 सेकेंड और स्टूडियो घड़ी 5:15, 16:17, 18 सेकेंड ऑन एयर चालू है। ये माइक नंबर 2 की आवाज आ रही है। वर्क स्टेशन 1 की टेस्टिंग दे रहा हूँ भैया।

भैया वर्क असिस्टेंट 2 की टेस्टिंग दे रहा हूँ। भैया टेस्टिंग ओवर एफएम जा रहा हूँ।